नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही साथियों, हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारेशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका।
1: आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता?
0: और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है।
1: पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
0: व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है, तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था, उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय।
2: तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं
0: है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए।
3: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुन ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हम रेडियो हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते मैं आप सबनो घणे मान स्वागत करा हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बहनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सहा कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो बहन बोनो आज हमारी कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि आपड़े बारिश ना मौसम में जो पोषण वाड़ी है इनो ध्यान हरते राखो ने कई कई एवी जैविक चीजें हैं जिन्हों आपड़ा ने प्रयोग करवानी जरूरत है। तो बहन बोनो अड़ा विषय माते हमारी अब तक की घना कनी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू कर इन पहले आपने हमारा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी बातें। तो आप हमारे रेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

करजो, खेतर ना अंगना में तमे पोषण वाड़ी करजो, आपड़ा खेतर नी तमे सुरक्षा ते करजो, आपड़ा खेतर नी तमे सुरक्षा तो करजो। ये तमे ताजा ताजा ये तमे ताजा ताजा बीज लगाड़ो के भाइयो बोनो होण जो रे, तमे ताजा ताजा बीज लगाड़ो के भाइयो बोनो होण जो रे। वात मारी हमलो तो खबर तमन थाएगा, वात मारी होणो तो खबर तमन थाएगा। ए आनी वातानो ए आनी

0: हे मारा खेतर में, हे मारा खेतर में ताजी खेती करो के करी दो उदार मारे। मारा खेतर मा सब्जी वाड़ी करो के करो तमे उदार मा। हे भाई बोनन कही दे जो ताजी खेती करो, भाई बोनन के ही दे जो आंगना जाजो, आंगना में जाजो ने सब्जिया उगाओ। हे मारा पानी नो करी दो उपयोग के वात मारी होन जोरे, तमे पानी नो करो उपयोग वात मारी होन जोरे। घरनो बीज वापरो तो ताजी सब्जी मलेगा, घरनो सीज वापरोगा तो ताजी सब्जी मलेगा। हे आनी वातानो, ए आनी वातानो दखो तमे ज्ञान के वात मारी होन जोरे, आनी वातानो राखो तमे ज्ञान वात मारी होन जोरे।
1: जिम की पप्पू काका आपे गीत ने माध्यम ते की आपड़े जे भाई बोन हैं इन्होंने हित ती आपड़े जे कार्यक्रम ने वाते हैं इनो सारे गीत ने माध्यम ते की वतार दी दू है। आशा कर रहा हूं कि आ हंगरी वाते आपड़े भाई बोन ने गमी होगा ने आपनो भी धन्यवाद करू चाहूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम ते की जुड़े ने मैंने अटली अच्छी जानकारी आली।
0: धन्यवाद।
1: जिम की बहन बोनू अवड़े आपड़े व्यास में पप्पू काका जुड़े तक हता ने इन्हें आपड़े ने घनी असल तरीका तक की घना कनी वाते बताड़ी है। आशा कर रहा हूं कि आ हंगरी वाते आपने गमी होगा क्योंकि अभी टाइम थे गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ा पर साथे पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनो, अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हंगरा ने हाथे मलीने जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जई वरे अधिकार हंगरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, कभी अलमारी खोलते हुए अचानक कोई पुरानी तस्वीर हाथ लग जाती है। तस्वीर में चेहरा हमारा होता है लेकिन आंखों के सामने पूरा बचपन घूम जाता है। वह पुराना घर, आंगन में खेलना, दोस्तों के साथ शरारते, स्कूल की पहली ड्रेस, त्योहार की रौनक और परिवार के साथ बिताए पल, जिन्हें समय तो पीछे छोड़ आया कशिश, लेकिन यादें आज भी हमारे साथ हैं।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही तस्वीरों में कैद बचपन की यादों की। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुरानी तस्वीरें सिर्फ हमारा पुराना समय हमें याद दिलाती है या उनसे हमें अपने जीवन और रिश्तों के बारे में कुछ सीख भी मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम इस विषय पर बात करेंगे, बचपन की तस्वीरों को बच्चों के साथ साझा करके कैसे उन्हें परिवार, रिश्तों, परंपराओं और अपने बीते समय से जोड़ा जा सकता है। बातें ढेर सारी रहेंगी लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय हमारे बीच बातचीत का जुड़ चुका है और गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमने आपसे की थी कि आज हम बात कर रहे हैं तस्वीरों में कैद बचपन, यादें भी और सीख भी को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: कहते हैं ना अंजलि जी की बचपन जिंदगी का वह खूबसूरत हिस्सा है जिसे हम पीछे तो छोड़ आते हैं लेकिन अपने दिल से कभी दूर नहीं कर पाते। श्रोता साथियों, बचपन की शरारतें, मिट्टी में खेलना, दोस्तों के साथ हंसना, दादी नानी की कहानियां सुनना, स्कूल की पहली किताब, पहली साइकिल, परिवार के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, ये सभी हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन अंजलि जी, आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने बचपन को एक अलग नजरिए से देखेंगे, यानी कि तस्वीरों के माध्यम से। जैसे कि एक पुरानी तस्वीर जब हमारे सामने आती है तो वह सिर्फ कागज पर छपी तस्वीर नहीं होती, उसमें हमारी एक पूरी कहानी छिपी हुई होती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, तस्वीर देखकर हमें याद आता है कि उस दिन कौन हमारे साथ था, हमने क्या पहना था, कहाँ गए थे, किस बात पर हंसे थे और उस समय हमारे जीवन में क्या खास था।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, आज मोबाइल फोन और कैमरे ने तस्वीर लेना बहुत आसान बना दिया। पहले किसी खास अवसर पर ही फोटो खिंचवाने का मौका मिलता था। परिवार के सभी लोग एक जगह बैठते, अच्छे कपड़े पहनते और फिर तस्वीर खींचते थे।
0: जी जी।
1: आज हमारे मोबाइल में सैकड़ों हजारों तस्वीरें होती हैं, लेकिन पुराने समय की एक तस्वीर को देखने का आनंद कुछ और होता है।
0: बिल्कुल।
1: कभी घर की पुरानी संदूक या अलमारी में रखी तस्वीरों को निकाल कर देखिए। किसी तस्वीर में पिता अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए दिखाई देंगे तो किसी में माँ बच्चे के स्कूल जाने के पहले उसका माथा चूम रही होगी।
0: बिल्कुल।
1: कहीं पूरा परिवार त्योहार के दिन साथ खड़ा होगा तो कहीं बच्चे गांव की गलियों में खेलते दिखाई देंगे। हर तस्वीर कशिश अपने आप में कहानी कहती है। तस्वीर हमें हमारे बीते समय से जोड़ती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं साथियों कि बचपन की तस्वीर हमारी पहचान है। यानी कि बचपन की तस्वीरें हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं। आज हम बड़े हो गए हैं साथियों, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, हमारा पहनावा, बोलने का तरीका और जीवन शैली भी बदल चुकी है, लेकिन हमारी पुरानी तस्वीर हमें हमारे उसी सरल और मासूम रूप से मिलाती है। अंजलि जी,
1: जी जी।
0: एक बच्चा जब अपने बचपन की तस्वीर को देखता है तो वो अपने माता पिता से सवाल पूछता है कि मैं इतना छोटा था क्या, मैं ये कपड़े पहनता था क्या, ये मेरे साथ कौन खड़ा है मम्मी पापा, मैं इस जगह कब गया था, मेरे बचपन का घर कैसा था, उस समय गांव में क्या क्या होता था। हम देखते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब देते हुए माता पिता बच्चों को सिर्फ एक तस्वीर की कहानी नहीं बताते।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि परिवार का इतिहास और अपनी जड़ों से जुड़ी बातें भी बताते हैं।
1: जी हाँ कशिश, अगर घर में दादा दादी, नाना नानी या परिवार के बुजुर्गों की पुरानी तस्वीर है तो उन्हें बच्चों के साथ जरूर देखिए। एक पुरानी तस्वीर के पीछे कई पीढ़ियों की कहानी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: बुजुर्ग बच्चों को बता सकते हैं कि उनके समय में गांव का जीवन कैसा था, लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते थे, त्योहार किस तरह मनाए जाते थे, बच्चे किन खेलों में हिस्सा लेते थे, स्कूल तक कैसे जाते थे, खेती पशुपालन का जीवन कैसा था,
0: जी जी।
1: साथ ही परिवार के लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहते थे। इस तरह तस्वीरें पीढ़ियों के बीच संवाद का माध्यम बन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: कशिश, आज कई बच्चे अपने परिवार के पुराने अनुभवों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में पुरानी तस्वीरें बच्चों को अपने जीवन और अपनी संस्कृति को समझने का एक आसान रास्ता देती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है तस्वीरों में कैद बचपन को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: और ये किस प्रकार से हमारे बच्चों के लिए यादें भी हैं और सीख भी, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें तस्वीरों से मिलने वाली पहली सीख, यानी समय कभी वापस नहीं आता।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, बचपन की तस्वीर हमें सबसे बड़ी सीख यही देती है कि समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। जिस दिन की तस्वीर हमें कल की बात लगती है, वो वास्तव में कई साल पुरानी हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: बचपन की तस्वीर देखकर हमें एहसास होता है कि जिंदगी कितनी तेजी से बदलती है। इसलिए आज जो समय हमारे पास है श्रोता साथियों, उसे केवल मोबाइल स्क्रीन पर बिताने के बजाय परिवार, दोस्तों और प्रकृति के साथ भी बिताना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आता, इसलिए बच्चों के साथ समय बिताइए। उनकी बातें सुनना, उनके साथ खेलना, उनके छोटे छोटे अनुभवों को महत्व देना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ
0: कशिश, कई बार पुरानी तस्वीरों में पूरा परिवार एक साथ दिखाई देता है। आज परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई नौकरी में व्यस्त है, तो कोई पढ़ाई में, तो कोई घर के कामों में। ऐसे में तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे मूल्यवान होता है। बच्चों को केवल महंगे खिलौने या चीजें देना ही जरूरी नहीं, उन्हें माता पिता का समय चाहिए, बातचीत चाहिए, प्यार चाहिए और परिवार का साथ चाहिए, क्योंकि एक साधारण सी तस्वीर कई साल बाद बच्चे के लिए सबसे कीमती याद बन सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने गांव की किसी पुरानी तस्वीर को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा।
0: बिल्कुल,
1: कहीं खेतों का दृश्य होगा, कहीं पेड़ के नीचे बैठे लोग आपको दिखाई देंगे, कहीं मिट्टी का घर होगा तो कहीं कुआं या तालाब होगा, और कहीं तो अंजलि जी बैलगाड़ियां भी हमें दिखाई देती हैं। आज इनमें से कई चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। ऐसी तस्वीरें श्रोता साथियों बच्चों से यह सवाल पूछने का अवसर देती है कि हमारे गांव में पहले क्या था और आज क्या बदल गया है।
0: जी जी,
1: इस सवाल से अंजलि जी बच्चे अपने गांव के इतिहास, प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय जीवन के बारे में सीख सकते हैं। साथ ही उन्हें ये भी समझाया जा सकता है कि पेड़, तालाब, कुएं, पशुधन केवल पुरानी तस्वीरों की चीजें नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
0: बिल्कुल कशिश, किसी बच्चे की पहली स्कूल ड्रेस की तस्वीर हो, स्कूल के कार्यक्रम की तस्वीर हो, या दोस्तों के साथ खिंचवाई गई फोटो, इनमें शिक्षा से जुड़ी कई यादें होती हैं। बच्चे जब अपनी पुरानी स्कूल की तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें अपने शिक्षक, सहपाठी और स्कूल की गतिविधियां याद आती हैं।
1: जी जी,
0: माता पिता भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि तुम्हें स्कूल के कौन सी बात सबसे अच्छी लगती थी। इस तरह तस्वीर के माध्यम से बच्चों को अपनी शिक्षा की यात्रा को याद करने, अपनी उपलब्धियों को पहचानने का मौका मिलता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, सप्ताह में एक दिन परिवार के लोग मिलकर यादों का समय रख सकते हैं। इसमें परिवार का कोई सदस्य एक पुरानी तस्वीर चुने और सभी लोग उस तस्वीर के बारे में बातचीत करें। उदाहरण के लिए, बच्चा माँ इस फोटो में मैं क्या कर रहा हूँ, माँ कहे तुम्हें याद नहीं उस दिन तुम्हारा स्कूल का कार्यक्रम था, और बच्चा कहे और ये कौन है, दादी कहे कि ये तुम्हारे नाना के पुराने मित्र हैं, उस समय सब गांव के मेले में गए थे। इस तरह बातचीत आगे बढ़ती जाएगी और एक तस्वीर पूरे परिवार को अपनी पुरानी यादों से जोड़ देगी।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज लगभग हर परिवार के पास मोबाइल है, इसलिए बच्चों को तस्वीरों का सही उपयोग सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चे दिन भर हर छोटी चीज की फोटो खींचने के बजाय ऐसी तस्वीरें लें जिनमें कोई कहानी, अनुभव या सीख हो श्रोता साथियों, जैसे कि पौधा लगाने की तस्वीर, दादा दादी के साथ बिताया गया समय, परिवार के साथ त्योहार की तस्वीर, स्कूल की उपलब्धि, किसी पारंपरिक कला या काम की तस्वीर, गांव की प्राकृतिक सुंदरता का दृश्य श्रोता साथियों। ऐसे में बच्चों को ये समझना जरूरी है कि हर तस्वीर सोशल मीडिया पर डालना जरूरी

0: नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: निजी तस्वीरों और परिवार की जानकारी को सुरक्षित रखना भी एक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल कशिश,
0: हम कह सकते हैं साथियों कि मेरी बचपन की तस्वीर और मेरी कहानी जैसी गतिविधियां भी बच्चों को करनी चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम बच्चों के लिए एक छोटी सी गतिविधि शुरू करें श्रोता साथियों, जिसमें बच्चे अपने घर की कोई पुरानी तस्वीर चुनेंगे और उसके बारे में 5 बातें लिखेंगे, जैसे कि तस्वीर कब की है, तस्वीर में कौन कौन है, ये तस्वीर कहाँ से ली गई है और उस दिन का क्या खास हुआ था। इसी के साथ ही इस तस्वीर से उन्हें क्या सीख मिलती है। हम देखेंगे कि फिर बच्चा अपने परिवार के किसी बुजुर्ग से उस तस्वीर की कहानी पूछेगा। इस गतिविधि से अंजलि जी बच्चे बातचीत करना, सुनना, लिखना और परिवार के इतिहास को समझना सीखेंगे।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि तस्वीरें हमारे जीवन के बीते हुए पलों को रोक कर रखने का एक सुंदर माध्यम है, लेकिन तस्वीरों की असली खूबसूरती उनके रंगों या चेहरे में नहीं बल्कि उनसे जुड़ी भावनाओं और कहानियों में होती है। बचपन की तस्वीर हमें हमारी मासूमियत याद दिलाती है, परिवार की तस्वीर हमें रिश्तों का महत्व समझाती है, गांव की पुरानी तस्वीर हमें अपनी मिट्टी और परंपराओं से जोड़ती है, बुजुर्गों की तस्वीर हमें पिछली पीढ़ियों के अनुभव तक ले जाती है और स्कूल की तस्वीर हमें अपने सीखों की यात्रा याद दिलाती है। इसलिए अगली बार जब आपको घर में कोई पुरानी तस्वीर मिले तो उसे केवल देखकर आगे मत बढ़ जाइए, उसे ध्यान से देखिए, उसके बारे में अपने माता पिता बुजुर्गों से पूछिए और उस कहानी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाइए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि यादें तभी जीवित रहती हैं जब उन्हें सिर्फ संभाल कर नहीं बल्कि साझा करके आगे बढ़ा जाता है। और बच्चों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि उनका आज का हर छोटा सा अनुभव कल की खूबसूरत याद बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए बचपन को केवल तस्वीरों में कैद रखने के बजाय उसे खेल, प्रकृति, परिवार, दोस्ती, सीख और मुस्कान से भरपूर बनाइए। तो श्रोता साथियों, आज ही आप अपने घर की कोई पुरानी तस्वीर खोजिए, उसे परिवार के साथ बैठकर देखिए, उसकी कहानी सुनिए और उस कहानी से मिलने वाले सीख को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाइए। क्योंकि याद रखिए, तस्वीरें बीते कल को दिखाती हैं और यादें हमें अपनेपन से जुड़ती हैं और उनसे मिलने वाले सीख हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हुई और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन और हमारी बातें अब यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहेगी फोटोग्राफी और युवा रचनात्मकता से करियर तक का सफर।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि श्रोता साथियों कहना चाहेंगे आपको कि आज लगभग हर युवा के हाथ में कैमरा है। किसी के पास प्रोफेशनल कैमरा है तो किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। हम अपने आसपास की खूबसूरत चीजों, लोगों, प्रकृति, यात्राओं, त्योहार और खास पलों को तस्वीर में कैद करते हैं कशिश।
0: जी हाँ,
1: लेकिन हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि क्या आपने कभी सोचा है कि तस्वीरें आपकी रचनात्मकता को पहचान, आपकी प्रतिभा को अवसर और आपके शौक को करियर में बदल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: फोटोग्राफी केवल कैमरा उठाकर तस्वीर खींच देना नहीं है, ये देखने का एक अलग नजरिया है। एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए श्रोता साथियों आज के कार्यक्रम में समझते हैं कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में युवा अपनी रचनात्मकता को कैसे निखार सकते हैं और इसे एक बेहतर करियर विकल्प में कैसे बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इसी विषय को लेकर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं फोटोग्राफी और युवा को लेकर, यानी कि रचनात्मकता से करियर तक के सफर को लेकर।
1: जी हाँ,
0: अगर यहाँ पर जाने जागृति जी की फोटोग्राफी होती क्या है तो साथियों फोटोग्राफी का सामान्य मतलब होता है किसी दृश्य, व्यक्ति, वस्तु या पल को कैमरे की मदद से तस्वीर के रूप में सुरक्षित करना। लेकिन इसके पीछे केवल तकनीक नहीं बल्कि कल्पना, संवेदनशीलता और नजरिया भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एक ही जगह पर खड़े 10 लोग एक ही दृश्य की तस्वीर ले सकते हैं, फिर भी संभव है कि सभी तस्वीरें अलग अलग दिखाई देंगी। ऐसा इसलिए जागृति जी क्योंकि हर व्यक्ति उस दृश्य को अपने नजरिए से देखता है और यही फोटोग्राफी की एक खूबसूरती होती है। साथियों
1: बिल्कुल
0: आपको बताना चाहेंगे कि फोटोग्राफर केवल ये नहीं देखता कि सामने क्या है बल्कि वह यह भी सोचता है कि इस दृश्य की कहानी क्या है और इसे तस्वीर के माध्यम से कैसे बताया जा सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज का युवा रचनात्मक है, वो नई चीजें सीखना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है और अपनी पहचान बनाना चाहता है।
0: जी
1: हम देखते हैं कि फोटोग्राफी युवाओं को इन सभी चीजों के लिए एक मंच दे सकती है। फोटोग्राफी के माध्यम से हमारे युवा अपनी कल्पना शक्ति, अवलोकन क्षमता और कलात्मक सोच को विकसित भी कर सकते हैं।
0: जी जी
1: मान लीजिए श्रोता साथियों कि कोई युवा अपने गांव की खेती, स्थानीय संस्कृति, लोक कलाकारों और हस्तशिल्प, मेले या प्राकृतिक सुंदरता की तस्वीरें खींचता है, धीरे धीरे उसकी तस्वीरें उसके क्षेत्र की कहानी लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कशिश की फोटोग्राफी केवल व्यक्तिगत शौक नहीं रहती बल्कि समाज और समुदाय को दिखाने और समझने का माध्यम भी बन जाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अगर बात करें कि फोटोग्राफी में सबसे जरूरी है रचनात्मकता को लेकर, तो दोस्तों किसी महंगे कैमरे का होना आपको अपने आप अच्छा फोटोग्राफर नहीं बना देता। सबसे पहले जरूरी है कि हमारा नजरिया रचनात्मक होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जैसे कि एक रचनात्मक फोटोग्राफर सामान्य से चीज में भी

0: खासियत खोज लेता है जागृति जी। वह रोशनी, छाया, भावनाओं, रंग, वातावरण और समय को समझने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए देखिए साथियों, तो बारिश की कुछ बूंदे किसी के लिए सिर्फ पानी हो सकती है, लेकिन एक जो रचनात्मक फोटोग्राफर होता है वो उन्हीं बूंदों में प्रकृति की सुंदरता देख सकता है।
1: जी हाँ,
0: सुबह खेत में काम करता किसान, स्कूल जाता बच्चा, बाजार की चहल पहल, किसी बुजुर्ग के चेहरे के भाव या किसी कलाकार का अपने काम में डूबा होना। साथियों, ये सभी तस्वीरों के माध्यम से कहानियां बन सकती है, इसलिए युवा साथियों को चाहिए कि वे केवल तस्वीर खींचने के बजाय देखना सीखें।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कई युवा सोचते हैं कि फोटोग्राफी शुरू करने के लिए महंगा कैमरा खरीदना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आज के स्मार्टफोन में भी काफी अच्छे कैमरे होते हैं। हम देखते हैं कि शुरुआत के लिए हमारा फोन ही हमारे लिए पर्याप्त हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने फोन से अलग अलग चीजों की तस्वीरें खींच सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग रोशनी में फोटो लेकर हमें देखना होगा, दिन और रात के अंतर को समझना होगा, साथ ही एक ही वस्तु के अलग अलग एंगल से तस्वीर खींचनी होगी, प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करना होगा, तस्वीर में अनावश्यक चीजों को कम करने की कोशिश करनी होगी।
0: बिल्कुल,
1: लोगों की तस्वीर लेते समय उनकी अनुमति और सम्मान को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहा गया है कशिश की शुरुआत में तस्वीर परफेक्ट नहीं होंगी और इसकी चिंता करने की भी हमें जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सीखने का सबसे अच्छा तरीका लगातार अभ्यास करना है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम हमारे युवा साथियों से बात कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से फोटोग्राफी में हमारे युवा साथी अपना करियर बना सकते हैं और फोटोग्राफी का सबसे अच्छा माध्यम रचनात्मकता कैसे होता है, ये भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जान रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें आगे भी ऐसे ही बनी रहेंगी हमारी, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ में, आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: साथ ही इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी फोटोग्राफी के क्षेत्र में, हमारे युवा साथी अपनी रचनात्मकता को कैसे निखार सकते हैं
1: जी जी,
0: और इसे एक बेहतर करियर विकल्प में कैसे बदल सकते हैं। तो जैसा कि हमने गीत से पहले बहुत सारी बातें की थी, यही हम जानते हैं कशिश कि फोटोग्राफी में तकनीक सीखना भी क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: साथियों रचनात्मकता के साथ साथ फोटोग्राफी की तकनीकी जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। युवाओं को धीरे धीरे कैमरे की मूल बातें सीखनी होगी, जैसे फोकस, एक्सपोजर, शटर स्पीड, अपचर, ISO, कंपोजिशन और लाइटिंग। इन शब्दों को सुनकर शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है श्रोता साथियों, लेकिन अभ्यास के साथ ये बातें आसानी से समझ आने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि फोटो एडिटिंग का बेसिक ज्ञान भी उपयोगी है। फोटो को सही तरीके से क्रॉप करना, रोशनी और कंट्रास्ट को संतुलित करना, तस्वीर को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना सीखा जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन एक बात आप जरूर याद रखिए कि एडिटिंग का उद्देश्य तस्वीर को बेहतर बनाना होना चाहिए, वास्तविकता को गलत तरीके से प्रस्तुत करना नहीं।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। साथी जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमारे श्रोता साथियों को हमने बताया था और अभी भी आपने बताया था कि हमारे युवा साथी इसमें अपना करियर बना सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: अगर जाने यहाँ पर कि करियर के विकल्प क्या हो सकते हैं, तो फोटोग्राफी सीखने के बाद युवाओं के सामने कई रास्ते होते हैं, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी। साथियों शादी और पारिवारिक कार्यक्रमों में फोटोग्राफरों की आवश्यकता होती है। ये केवल तस्वीर खींचना ही नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं और खास पलों को कैद करना भी महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल,
1: जिन युवाओं को प्रकृति और वन्य जीवों में रुचि है वे इस क्षेत्र को सीख सकते हैं। इसमें श्रोता साथियों धैर्य और प्रकृति के बीच सम्मान बहुत जरूरी होता है, यानी कि श्रोता साथियों आप नेचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी सीख सकते हैं। साथ ही अगर बात करें फोटो जर्नलिज्म की, तो समाचार और सामाजिक घटनाओं को तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तुत करना भी फोटोग्राफी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है।
0: जी हाँ,
1: यहाँ जागृति जी फोटोग्राफर को घटनाओं को समझने और जिम्मेदारी से तस्वीर प्रस्तुत करने की जरूरत होती है।
0: और हम कह सकते हैं कशिश कि ऑनलाइन व्यवसाय और दुकानदारों को अपने उत्पादों की अच्छी तस्वीरों की आवश्यकता होती है। कपड़े, हस्तशिल्प, भोजन, आभूषण और दूसरे उत्पादों के लिए प्रोटेक्टिव फोटोग्राफी की जरूरत भी पड़ती है।
1: जी जी,
0: यात्रा और पर्यटन से जुड़े स्थानों, संस्कृति, भोजन और स्थानीय जीवन को तस्वीर के माध्यम से भी प्रस्तुत करना भी एक क्षेत्र है। साथियों मॉडल, कलाकार, प्रोफेशनल प्रोफाइल और व्यक्तिगत पोर्ट्रेट के लिए भी फोटोग्राफी की जरूरत होती है।
1: जी हाँ,
0: आज छोटे व्यवसायों, संस्थाओं और क्रिएटर्स को सोशल मीडिया के लिए लगातार अच्छे विजुअल कंटेंट की जरूरत होती है कशिश, और यहाँ फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियो और बेसिक एडिटिंग का ज्ञान भी काफी उपयोगी हो सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में अगर हमारे किसी युवा साथी को लगता है कि उसे फोटोग्राफी पसंद है तो वे एक व्यवस्थित तरीके से शुरुआत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, आपका पहला कदम तो यह होगा कि आप फोटोग्राफी सीखेंगे, यानी कि फोटोग्राफी के बेसिक नियमों को आप समझेंगे, फिर रोज कुछ नया शूट करने की आप कोशिश करेंगे। श्रोता साथियों, आपको लोगों की तस्वीरें पसंद है, प्रकृति की, संस्कृति की या उत्पादों की, इसे आप समझें। पोर्टफोलियो बनाइए, यानी कि अपनी सबसे अच्छी तस्वीरों को व्यवस्थित करके एक पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकते हैं। अनुभवी लोगों से अपनी तस्वीरों पर सुझाव मांगिए, आलोचना से घबराइए नहीं श्रोता साथियों। साथ ही नेटवर्क बनाने की कोशिश करें, यानी कि स्थानीय कार्यक्रमों, कलाकारों, व्यवसाय और दूसरे क्रिएटिव लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं। फोटोग्राफी में तकनीक और ट्रेंड लगातार बदलते रहते हैं जागृति जी, इसलिए हमारे युवा साथियों को कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारे युवाओं के मन में अक्सर एक सवाल आता है कशिश कि क्या अच्छा कैमरा खरीदने के बाद ही मैं अच्छा फोटोग्राफर बन सकता हूँ।
1: जी हाँ
0: साथियों, इसका जवाब है नहीं। महंगा कैमरा हमारे पास बेहतर तकनीकी विकल्प ला सकता है, लेकिन अच्छी तस्वीरों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज है फोटोग्राफर की सोच।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारी नजर में कहानी नहीं है तो महंगा कैमरा भी तस्वीर को खास नहीं बना सकता।
1: जी हाँ,
0: इसलिए शुरुआत में उपकरणों के पीछे भागने के बजाय अपने स्किल्स और क्रिएटिविटी पर निवेश कीजिए। पहले सीखिए, अभ्यास कीजिए, जब जरूरत महसूस हो तब धीरे धीरे बेहतर उपकरणों की ओर जरूर बढ़िए।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथी युवा साथियों, स्थानीय स्तर पर भी आपको बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। जैसे कि फोटोग्राफी में अवसर खोजने के लिए हमेशा बड़े शहर की ओर जाने की जरूरत नहीं होती, हमारे अपने गांव, कस्बे और शहर में भी बहुत कुछ ऐसा है साथियों जिसे तस्वीरों में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे कि स्थानीय मेले हो गए, पारंपरिक कला, लोक संगीत, खेती, ग्रामीण जीवन, हस्तशिल्प, छोटे व्यवसाय और सामुदायिक गतिविधियां। जागृति जी, इन सबकी अच्छी तस्वीरें बनाई जा सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक युवा अपने क्षेत्र की दृश्य कहानी तैयार कर सकते हैं, इससे न केवल उनकी फोटोग्राफी बेहतर होगी बल्कि वे अपने क्षेत्र की संस्कृति और पहचान को भी सामने लाने में योगदान दे सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि फोटोग्राफी में रचनात्मकता जितनी जरूरी होती है उतनी ही जरूरी है जिम्मेदारी। साथियों, किसी व्यक्ति की तस्वीर लेने से पहले उसकी अनुमति लेना अच्छी आदत है, विशेषकर तब जब तस्वीर को सार्वजनिक रूप से साझा किया जाना हो। बच्चों हो, निजी परिस्थितियां या संवेदनशील घटनाओं की तस्वीरों को साझा करते समय अतिरिक्त सावधानी बहुत जरूरी है। किसी की गरीबी, परेशानी या निजी स्थिति को केवल कंटेंट समझकर प्रस्तुत नहीं करना होगा। एक जिम्मेदार फोटोग्राफर की कोशिश होनी चाहिए कि उसकी तस्वीर किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचाए।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोताओं, कैमरा केवल तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं करता, वो हमारी सोच और समाज के प्रति हमारे नजरिए को भी सामने लाता है।
1: जी हाँ, ऐसे में युवा साथियों, अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने की इच्छा है और आपको तस्वीरों के माध्यम से कहानियां बताना अच्छा लगता है, तो फोटोग्राफी को केवल शौक मानकर आप छोड़ मत दीजिए। इससे सीखिए, अभ्यास कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए साथियों, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और लोगों से जुड़िए, और सबसे जरूरी बात, अपनी रचनात्मकता पर भरोसा रखिए। हो सकता है जागृति जी कि आज हमारे युवा साथी अपने मोबाइल से एक सामान्य सी तस्वीर खींच रहे हों, लेकिन लगातार सीखते सीखते वही तस्वीरें कल उनके काम का हिस्सा बन जाएं। साथियों, करियर हमेशा एक दिन में तैयार नहीं होता, वो छोटे छोटे प्रयासों, सीखने और लगातार अभ्यास करने से बनता है।
0: बिल्कुल, तो साथियों, आज की हमारी बातचीत से यही समझ आता है कि फोटोग्राफी केवल तस्वीरें खींचने का हुनर नहीं है, बल्कि दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की कला भी है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे पास कैमरा हो, स्मार्टफोन हो, शुरुआत आज से ही की जा सकती है। अपने आसपास देखिए, किसी खूबसूरत दृश्य को महसूस कीजिए, किसी कहानी को पहचानिए और उसे तस्वीर के माध्यम से कहने की कोशिश जरूर कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हो सकता है कशिश की हमारी खींची हुई एक तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर ना हो, बल्कि हमारी रचनात्मक पहचान और हमारे भविष्य के करियर की पहली सीढ़ी हो।
1: जी हाँ,
0: याद रखिए युवा साथियों, शौक तब हुनर बनता है जब उसमें सीखने की लगन जुड़ती है, और हुनर तब करियर बनता है जब उसके साथ निरंतर मेहनत और सही दिशा जुड़ती है।
1: जी हाँ,
0: इसी सकारात्मक सोच के साथ आज किस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
6: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मय देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
5: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
6: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ने

0: हवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे
1: होवे। आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सु व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉक रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है मानवता सबसे बड़ा धर्म क्यों है को लेकर। जैसे कि श्रोता साथियों, धर्म हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है, लेकिन मानवता हमें इंसान से इंसान तक पहुंचने का रास्ता सिखाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे मानवता सबसे बड़ा धर्म क्यों है, लेकिन शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं मानवता सबसे बड़ा धर्म क्यों है, तो अंजलि, मनुष्य को प्रकृति ने बहुत सारी विशेषताएं दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, संवेदनाएं दी है, दूसरों के दुख सुख को समझने की क्षमता भी दी है, और यही संवेदनशीलता मनुष्य को वास्तव में इंसान बनाती है। हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे धर्म, जाति, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं, लेकिन इन सभी विविधताओं के बीच एक मूल्य ऐसा है जो हर व्यक्ति को जोड़ता है, और वो है मानवता। इसलिए श्रोता साथियों, कहा जाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।
1: बिल्कुल जागृति जी, विश्व मानवता दिवस हमें इसी विचार की याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: किसी जरूरतमंद की सहायता करना, दुखी व्यक्ति को सहारा देना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी कमजोर के अधिकार की रक्षा करना और बिना किसी भेदभाव के सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, ये सभी मानवता के रूप है। मानवता का अर्थ केवल किसी की मदद कर देना नहीं, मानवता एक ऐसी भावना है जागृति जी, जिसमें दया, करुणा, प्रेम, सम्मान, सहानुभूति, सहयोग और समानता शामिल है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के दर्द को अपना दर्द समझते हैं और उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब मानवता जीवित होती है। मानवता हमें सिखाती है श्रोता साथियों कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति से नहीं जागृति जी, बल्कि उसके इंसान होने से है। दुनिया में हमारी पहचान अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी मूल आवश्यकताएं और भावनाएं समान हैं। हर व्यक्ति सम्मान, सुरक्षा, प्रेम और अवसर का अधिकारी है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे धर्मों ने प्रेम, सत्य, करुणा और सेवा का संदेश दिया है। अलग अलग धार्मिक परंपराओं के मार्ग भले अलग हों, लेकिन श्रोताओं, उनका मूल उद्देश्य मनुष्य को बेहतर बनाना है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक होने का दावा करे लेकिन उसके व्यवहार में दया नहीं है, प्रेम नहीं है और सम्मान नहीं है, तो उसकी धार्मिकता अधूरी है।
1: बिल्कुल,
0: मानवता हमें किसी विशेष पूजा पद्धति का पालन करने के लिए नहीं कहती है, ये केवल इतना कहती है कि दूसरे मनुष्य के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो। इसलिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि ये किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की साझा पहचान है।
1: जी हाँ जागृति जी, मानवता का सबसे सुंदर रूप है सेवा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तब हम समाज को मजबूत बनाते हैं। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना, बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना, जरूरतमंद व्यक्ति तक भोजन पहुँचाना, किसी बीमार व्यक्ति के लिए सहायता जुटाना या किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना, ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सेवा के लिए श्रोता साथियों, हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। कई बार हमारा समय, हमारी मेहनत, हमारे अच्छे शब्द, हमारी संवेदनशीलता ही किसी के लिए सबसे बड़ी सहायता बन जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, अगर संकट के समय मानवता की परीक्षा को लेकर हम बात करें, तो सामान्य परिस्थितियों में अच्छे व्यवहार की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन श्रोताओं, वास्तविक मानवता की परीक्षा संकट के समय होती है, जब किसी व्यक्ति पर कठिनाई आती है और दूसरे लोग बिना स्वार्थ उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तब समाज की असली शक्ति दिखाई देती है। अंजलि, प्राकृतिक आपदा हो, बीमारी हो, दुर्घटना हो या किसी अन्य संकट के समय जब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब ये सिद्ध होता है कि इंसानियत की भावना किसी भी सीमा से बड़ी है।
1: बिल्कुल,
0: संकट हमें ये सिखाता है श्रोताओं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं है। आज किसी और को हमारी जरूरत हो सकती है और कल हमें किसी और के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि मानवता जो है वो भेदभाव से ऊपर उठना है। मानवता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है भेदभाव को समाप्त करना। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति या क्षेत्र के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा समझना मानवता के विरुद्ध है। हर व्यक्ति की गरिमा समान है, किसी के पास अधिक साधन है और किसी के पास कम, लेकिन इससे किसी के मानवीय मूल्य में अंतर नहीं आता। एक सच्चा मानवीय समाज वही है जहां व्यक्ति को उसके कर्म, चरित्र और व्यवहार से सम्मान मिलता है, न कि उसकी सामाजिक पहचान से।
0: बिल्कुल अंजलि, आज विज्ञान और तकनीक ने दुनिया को बहुत करीब ला दिया है। हम कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी हिस्से के व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमें मानवीय संवेदनाओं को भी मजबूत करना होगा। कई बार हम देखते हैं कि हम सोशल मीडिया पर किसी दुखद घटना पर प्रतिक्रिया तो दे देते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अपने आसपास मौजूद जरूरतमंद व्यक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। मानवता हमें केवल भावनाएं व्यक्त करना नहीं सिखाती बल्कि जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाना भी सिखाती है।
1: जी जी,
0: आज हमें ऐसे समाज की आवश्यकता है जहां तकनीक के साथ संवेदना भी बढ़े शिक्षा के साथ संस्कार भी बढ़े और विकास के साथ समानता भी बढ़े।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातें जान रहे हैं, मानवता सबसे बड़ा धर्म क्यों है उसको लेकर, ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि मानवता का वास्तविक अर्थ क्या है, मानवता सबसे बड़ा धर्म क्यों है, इसी के साथ हम जान पाए कि सेवा में छिपी है सच्ची मानवता, संकट के समय मानवता की परीक्षा किस तरीके से होती है, भेदभाव से उठना और आज के समय में मानवता की आवश्यकता क्यों अधिक है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है युवाओं की भूमिका की। श्रोता साथियों, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उनमें ऊर्जा, नई सोच, परिवर्तन की क्षमता होती है। यदि युवा जागृति जी मानवता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो समाज में सकारात्मक बदलाव तेजी से आ सकता है। युवा रक्तदान जैसे सेवा कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण में भाग ले सकते हैं, बुजुर्गों की सहायता कर सकते हैं और समाज में फैली नफरत भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा को सोशल मीडिया पर केवल संदेश साझा करने के बजाय वास्तविक जीवन में मानवता का उदाहरण बनना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है, अगर हम बच्चों की भूमिकाओं के लेकर बात करें तो मानवता की नींव बचपन में रखी जाती है। बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान देना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें दूसरों का सम्मान करना, अपनी वस्तुएं साझा करना, कमजोर की सहायता करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और प्रकृति की रक्षा करना भी सिखाना होगा। जब कोई बच्चा अपने मित्र की मदद करता है, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में सहयोग करता है या किसी जरूरतमंद के साथ अपनी चीज साझा करता है, तब वो मानवता का वास्तविक पाठ सीख रहा होता है। परिवार और विद्यालय मिलकर बच्चों में ऐसे संस्कार विकसित कर सकते हैं जो आगे चलकर एक संवेदनशील और जिम्मेदार समाज का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, मानवता केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील होना भी हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, जल स्रोतों की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। यदि श्रोता साथियों, हम अपने विकास के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक दोहन करते

0: उसका प्रभाव मनुष्य पर ही पड़ता है, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना भी मानवता की सेवा है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, मानवता के लिए हमेशा बड़े काम करना जरूरी नहीं होता। किसी उदास व्यक्ति से प्रेम से बात करना, किसी अकेले व्यक्ति की बात सुनना, रास्ते में पड़े कचरे को उठाकर उचित स्थान पर डालना, किसी जरूरतमंद को सही जानकारी देना या किसी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करना भी मानवता है। कभी कभी हमारे कुछ शब्द किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, हमारी छोटी सी सहायता किसी परिवार की मुश्किलें आसान कर सकती है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चा धर्म तो वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनाता है। पूजा, प्रार्थना और धार्मिक आस्थाएं व्यक्तिगत विश्वास का विषय है, लेकिन दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार हमारे चरित्र को दर्शाता है। अगर हमारे भीतर करुणा है तो हम किसी को अनावश्यक पीड़ा नहीं देंगे। अगर हमारे भीतर प्रेम है तो हम नफरत फैलाने से बचेंगे। अगर हमारे भीतर मानवता है तो हम जरूरतमंद को देखकर उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मानवता किसी धर्म का विरोध नहीं करती, बल्कि हर धर्म के अच्छे मूल्यों को व्यवहार में उतारने का रास्ता दिखाती है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि विश्व मानवता दिवस हमें याद दिलाता है कि दुनिया को केवल बड़े बड़े भाषणों की नहीं, बल्कि छोटे छोटे मानवीय कार्यों की जरूरत है। दुनिया में शांति तभी संभव है जब लोगों के बीच सम्मान होगा, सहयोग होगा और संवेदना पड़ेगी। अगर अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम कहें कि हम किसी के साथ उसकी पहचान के कारण भेदभाव नहीं करेंगे, जरूरतमंद व्यक्ति की क्षमता के अनुसार सहायता करेंगे, समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अपने व्यवहार से दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे, तो मानवता को एक दिन मनाने का विषय नहीं है, ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज दुनिया को हथियारों से अधिक मानवीय संवेदनाओं की जरूरत है। विकास की ऊंची इमारतें तभी सार्थक हैं जब उनके भीतर रहने वाले लोगों के दिलों में करुणा और सम्मान हो। शिक्षा तभी सफल है श्रोता साथियों जब वह हमें केवल सफल व्यक्ति नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी बनाए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा धर्म, भाषा, संस्कृति और पहचान अलग हो सकती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी साझा पहचान है कि हम इंसान हैं। असली मानवता को केवल एक विचार न बनाकर अपने व्यवहार में उतारना होगा। किसी की मदद करते समय उसका परिचय पूछने से पहले उसकी जरूरत समझनी होगी। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी परिस्थिति पर निर्णय लेने की बजाय उसके साथ खड़ा होना होगा। मानवता वह दीपक है श्रोता साथियों जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाती है। तो आज के दिन हम ये संकल्प ले सकते हैं कि नफरत के स्थान पर प्रेम चुनेंगे, भेदभाव के स्थान पर समानता चुनेंगे, स्वार्थ के स्थान पर सेवा चुनेंगे और हर परिस्थिति में इंसानियत को सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम कितने बड़े पद पर हैं या हमारे पास कितना धन है, यह नहीं है, बल्कि यह है कि हमने कितने लोगों के जीवन में अच्छाई, आशा और मुस्कान लाने का प्रयास किया। क्योंकि जागृति जी, सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़े और उस धर्म का नाम है मानवता।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मानवता को लेकर हमने बहुत सारी बातें की, आखिर मानवता क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, बातें बहुत सारी हो चुकी है। समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि विश्व मानवता दिवस पर हम केवल मानवता की बातें न करें बल्कि उसे अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में उतारने का संकल्प लें, क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत किसी बड़े आंदोलन से नहीं होती बल्कि हमारे छोटे छोटे अच्छे अच्छे व्यवहार से होती है। कहा भी गया है कि न धर्म की दीवार रहे, न जाति का भेद रहे, हर दिल में प्रेम हो, हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इंसानियत से बड़ा कोई परिचय नहीं और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी पहचान हो और यही हमारा सबसे बड़ा धर्म हो। इंसान बने, इंसानियत निभाए और इंसानियत को आगे बढ़ाए।
1: बिल्कुल, इन्हीं बातों के साथ अब विदा लेते हैं। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जरूर दोनों रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं, ई इन्होंने रक्षा करे है। तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नु भविष्य सुरक्षित करा। बोना नी आवाज विकास नी असली पहचान है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम घूमर हमरवारी अमरे हित्य बुन ने आपनी पूर्ण अंजलि नु राम राम बोने आप हम रेडियो हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में जेम के बोने अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथे तो बोनो आज अमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नु विषय है के अपने जीवन में योग नु हूँ महत्व है हरते अपने योग बल्ले टाइम काढ़ ये स्वस्थ जीवन शैली अपने हरते अपनावी सुवे तो अना विषय माते घना कानी बातें अमारी अब तक की थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा अपनी बातें तो बोनो आप हमरते रेजू अपड़ू रेडियो अपनी बातें वाकर रेडियो 90.8 FM माते

0: ਹੋਨੀ ਕੀਤਾ ਏ ਸ਼ੁਪੁਰੂ ਨਾਲਾ ਗੀਤ ਬਾਤ ਇੱਕ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਘਣੇਵਾਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਅਮਾਰੇ ਆਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਘੂਮਰ ਮੇ ਜਿਮ ਕੀ ਅਮੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਤਾਡੂ ਤੂੰ ਕਿ ਆਜ ਆਪਣਾ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਵਾ ਵਾਰਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਨ ਬੱਲੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਹੂੰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਨੇ ਹਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਨ ਨੇ ਸਵਸਥ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੇ ਅਪਣਾਵੂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਮਾਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਵਾ ਬੱਲੇ ਆਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ ਜੁੜੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੀ ਲੈਣਾ ਨੀ ਵਾਤ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰੇ ਕੜਾ ਆਪਣੀ ਵਾਤ ਹੈ ਮੈਮ ਨਮਸਕਾਰ
1: नमस्कार
0: मैम आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वागड़ रेडियो परिवार में
1: मैं भी आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने यहाँ बैठने का और अपनी बातचीत रखने का एक मौका दिया है
0: बिल्कुल तो जैसा कि मैम आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी
1: मैं डॉक्टर सुनीता हूँ मैंने कोर्स किया है नेचुरोपैथी का साथ में हेल्थ कोचिंग करती हूँ महिलाओं को क्या खाना है कब खाना है कितना सोना चाहिए किस तरह से योगा करना चाहिए एक्सरसाइज करनी चाहिए
0: बिल्कुल
1: उनका जो भावनात्मक लगाव है या भावनात्मक स्थिति उनके स्वास्थ्य को कितना असर डालती है
0: बिल्कुल
1: और उनके आसपास का वातावरण क्या उन पर असर डालता है उन सब पर मैं काम करती हूँ
0: बिल्कुल तो जैसा कि मैम आपने महिलाओं के बारे में बताया तो यही आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि महिलाओं के लिए योग का क्या महत्व है तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि महिलाओं के लिए योग क्यों जरूरी है और साथ ही नियमित योग करने से महिलाओं को कौन कौन से प्रमुख स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं
1: मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि महिलाओं की योग पर अपन बात करें योग से पहले ये जानना जरूरी है कि पांच तत्व से मिलकर हम बने हैं
0: बिल्कुल
1: अब वो पांच तत्व के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि पांच तत्वों में से कुछ भी मिसिंग हो जाए एक भी तत्व कम हो जाए तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है
0: जी जी
1: अभी तक हम सिर्फ इतना ही समझ रहे थे लेकिन आज हम उसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं आयुर्वेदा कहता है कि अगर पृथ्वी तत्व कम हो जाए तो हमारी बोन्स में हमारी मांसपेशियों में इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है बाल में हो सकती है नाखून में हो सकती है इसका हमारे इमोशन के साथ ये संबंध है कि अगर पृथ्वी तत्व कम है तो डर की भावना ज्यादा अंदर तक बैठी हुई दिखती है
0: जी जी
1: जॉइंट पेन हो सकते हैं ये इसकी डिजीज है फटीग हो सकता है कई बार महिलाएं आपने सुना होगा महिलाएं कहती है अरे आज तो मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है घबराहट हो रही है थोड़ा बेहोशी जैसा फीलिंग आ रहा है तो ये हो सकता है अब बीमारी हमने पहचान ली कि ये होगा ऐसा हो सकता है हीलिंग किससे होगी
0: जी हाँ
1: तो जो रूट वाली सब्जियां हैं आपका शकरकंद है मूली है गाजर है ये जो रूट वाली सब्जियां हैं इनको खाने से और दूसरा है जमीन के संपर्क में रहने से अगर हम जमीन के धरती माँ के संपर्क में रहते हैं हर रोज 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जमीन पर नंगे पांव चलते हैं खास तौर से मिट्टी में चलते हैं घास में चलते हैं तो आप देखो कि ड्रास्टिक चेंज आता है हमारा जो स्थूल है हमारा जो संरचनात्मक ढांचा है या हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो ऑल ऑफ सडन कम हो जाती है खत्म हो जाती है
0: बिल्कुल
1: दूसरी बात करूंगी मैं पानी पर ब्लड फ्लो पानी की वजह से ही होता है हम जो बोल रहे हैं कुछ पानी हमारी सांस के साथ भाप के रूप में बाहर निकल जाता है दिखता तो नहीं है लेकिन होता ही है
0: बिल्कुल
1: अब इसकी कमी होगी जो इसका इमोशनल पार्ट है वो है कि हमें गहराई से दुख महसूस होता है अगर हम कभी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आज ये बहुत गहरे अवसाद में है बहुत ज्यादा गहरे दुख में है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इनके शरीर में अभी पानी की कुछ कमी हो गई है
0: बिल्कुल
1: और डिजीज होगी ब्लॉटिंग होगी पेट में गैस बनेगी है ना ये समस्याएं होती हैं अब किससे ठीक हो सकती हैं तो इनको करना है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है
0: बिल्कुल
1: पानी की भरपूर मात्रा ये पिए दिन में और कई बार कहा जाता है कि भाई मैं कितना पानी पीऊं 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर कितना तो एक छोटा सा पहचान है कि हमें करना है अगर हम जितनी बार पेशाब जा रहे हैं और पेशाब का रंग बदल रहा है सफेद से पीला हो गया तो मान के चलना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी हो रही है और हमें इनटेक बढ़ा देना चाहिए ऐसे ही अग्नि आग के बिना सब कुछ अधूरा सा है
0: बिल्कुल
1: अग्नि है तो सब है अग्नि है तो जल है अग्नि है तो स्थूल भी है
0: बिल्कुल
1: आपको पता ही है कि जब अग्नि पृथ्वी ठंडी हो गई तो ये हमारी पृथ्वी बन गई नहीं तो आग का गोला थी
0: जी हाँ
1: कुछ भी नहीं था
0: बिल्कुल
1: और दूसरी तरफ देखें तो सूरज अगर है वो अग्नि का आधार है अगर वो है तो सब कुछ है ये धरती है धरती पर पूरी वनस्पति है आप हैं मैं हूँ लगभग सारी चीजें अग्नि से जुड़ी
0: हुई हैं बिल्कुल
1: इस तत्व के कमी होने से लीवर बीमार हो सकता है अब लीवर में बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे कहेंगे कि लीवर अफेक्ट होगा। इसका मेन इमोशनल है चीजें हैं कि एनर्जी बहुत होती है, जिनमें अग्नि तत्व बहुत ज्यादा होता है वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, जो बहुत ज्यादा अग्नि शरीर में होगी, या ये कहें कि वो व्यक्ति कुछ गर्म खाना खा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: जो अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं तो एसिडिटी होगी। एसिडिटी अगर सेटल डाउन नहीं होती है तो एक्ने भी होता है, वो हमारी स्किन पे, हमारे चेहरे पे भी
0: दिखाई
1: दिखने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: यानी पृथ्वी तत्व पर अग्नि तत्व का असर दिखाई देने लगता है। इलाज या हीलिंग, कूलिंग रखना, अपने आप को कूल रखना चाहिए। कूल रखने के लिए क्या करेंगे, डाइट अच्छी हो, पानी की मात्रा अच्छे से पिए, तो अग्नि तत्व ऑटोमेटिकली कम हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: हवा, वायु, ये हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। एंग्जाइटी बढ़ती है अगर इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए। इसकी कमी से जो डिजीज रहती है वो गैस बनती है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, यानी नींद ना आना या इंसोमेनिया की हो सकती है। अब हीलिंग माने क्या करके हम इसमें स्वस्थ रह सकते हैं,
0: जी हाँ,
1: या अपनी वायु को बैलेंस रख सकते हैं, बेसिकली वो स्लो ब्रीथ है, जिसे हम कहते हैं प्राणायाम कहेंगे, अनुलोम विलोम कहेंगे, भस्त्रिका, और वो करेंगे लेकिन तब जब हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल से थोड़ा अच्छी हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: अब स्पेस की बात करते हैं, आकाश। कहा तो जाता है कि आकाश का मतलब सब कुछ खाली।
0: बिल्कुल।
1: तो ये प्रूव हो गया कि जो हमारा दिमाग है वो खाली है।
0: बिल्कुल।
1: तो आकाश हमारे दिमाग में बैठा है, फिर हमारे यूट्रस में है, हमारे लंग्स में है, जहाँ हम आकाश को
0: देखते हैं।
1: अब इमोशनली अगर देखें, इसकी कमी होने से हमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, कंफ्यूजन बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: डिजीज डिप्रेशन हो सकता है, अवसाद हो सकता है, और इसका एक ही उपचार है, एक ही हीलिंग है कि जिस व्यक्ति में आकाश की कमी है उसे मेडिटेशन करना चाहिए, और हर रोज करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: बहुत ज्यादा ना करें, लेकिन 5 मिनट से मेडिटेशन शुरू करें और लाइफ उससे बढ़िया हो जाती है, हम अपने डिजीज को कम कर पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब आती हूँ मैं आपके उस सवाल पर,
0: जी हाँ,
1: जो आपने मुझसे पूछा था कि महिलाओं को योग क्यों जरूरी है और उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: मैं कहती हूँ कि योग करने से शरीर में लचीलापन रहता है, मांसपेशियां पुष्ट होती है, और आंतरिक संतुष्टि बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: केवल ऐसा नहीं है शरीर की संतुष्टि बढ़ी है, शरीर ही सिर्फ लचीला हो रहा है, बल्कि आंतरिक अंग भी पुष्ट होते हैं साथ में।
0: बिल्कुल।
1: अब वो हमारे बहुत सारे अंग हैं, हम बहुत सारी चीजों की एक्सरसाइज करते हैं, लाइक घुटनों में पेन है तो काफ वाले योग करते हैं,
0: जी हाँ,
1: जंघा में दर्द है तो हम हैमस्ट्रिंग वाले योग करते हैं, ऐसे अलग अलग स्थानों पे शरीर के अलग अलग जगहों पे दर्द है, समस्या आ रही है, तो उसके लिए अलग अलग योग बनाए गए हैं,
0: जी हाँ।
1: अब हर महिला ये करती है कि सुबह उठती है, राउंड द क्लॉक चलती है, सिर्फ काम ही काम होता है, किसी भी महिला से पूछे तो कहती है अरे मुझे कहाँ योग की और एक्टिविटी की जरूरत है, एक्सरसाइज की जरूरत है, मैं तो दिन भर ही एक्सरसाइज करती हूँ।
0: जी जी।
1: पर ऐसा होता नहीं है। एक्सरसाइज और योगा का मतलब है कि अपने लिए कुछ ऐसा समय निकालना जिसमें आप

0: साथियों को एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। तो हम आज कार्यक्रम में आपकी पसंद का एक गीत सुनवाना चाहेंगे ताकि हमारी जो ये बातें हैं वो और भी रोचक हो जाए।
1: बालिका वधू का एक गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर संभव हो तो आप वो गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, फिर आगे हमारी कार्यक्रम में बातें जारी रहेंगी।

0: जैसा कि मैम आपकी पसंद का बहुत ही प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना और हमारी गीत के बाद की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाएं। तो जैसा कि आपने बताया था कि महिलाओं का ये रहता है कि मैं पूरे दिन ही काम करती हूँ, मुझे योग करने की क्या जरूरत है, तो आज की जो व्यस्त दिनचर्या है उसमें योग के लिए महिलाएं समय कैसे निकालें, क्या कोई आसान तरीका है?
1: हाँ बिल्कुल आसान तरीका है। महिलाएं बैठ के काम करती हैं, अभी आप देखो किचन में काम करती हैं, खड़ी होके काम करती हैं, आजकल तो वो मॉडर्न किचन का बड़ा जमाना है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें वो कर सकती हैं कि उनका जो स्लैब है उसका इस्तेमाल कर सकती है, वो वॉल पुशअप्स की जगह पे स्लैब पुशअप्स कर सकती हैं।
0: जी जी।
1: सब्जी अगर काटनी है तो थोड़ा उकड़ू बैठ के अपनी सब्जियां काट सकती है ताकि उनकी जो पेल्विक कैविटी है वो पुष्ट हो जाए। पुशअप्स कर रही हैं तो उनकी कमर, उनके पैर, उनके काफ वो बढ़िया रहेंगे।
0: जी जी।
1: कंधे अच्छे होंगे तो काम भी हो जाएगा और पुशअप्स भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि जब दाल बन रही है तो कंटिन्यू खड़े होकर दाल हिलाएगी,
0: बिल्कुल
1: तो कर सकती है। 30 मिनट हर महिला

0: को टहलना ही चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: किसी भी तरह वो समय निकाले अपने लिए। और जब वो काम कर रही है, चल रही है, किसी से फोन पे बात कर रही है तो चलते हुए फोन पे बात कर ले।
1: जी जी।
0: किसी को बाहर आवाज लगानी है तो अपने टेरेस पे या अपने घर में घूमते फिरते वो बात कर सकती है, या बुलाने के लिए बार बार जा सकती है। किसी ने घर में कोई आया, कोई मेहमान आया, घंटी बजाई, तो वो जाके वहाँ बाहर जाके देखे, बाकायदा दरवाजा खोले। अदरवाइज ये होता है कि हम खिड़की से झांक के कह देते हैं, हाँ हाँ आ जाइए,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज है जिनको करके वो अपने आप को स्वस्थ रख सकती है।
1: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं, कुछ आसान से तरीके हैं जिसके माध्यम से अपने लिए समय निकाल सकती हैं। यही मैम, हर उम्र में अलग अलग कुछ योग करने की जरूरत होती है, जैसे कि किशोरावस्था में कोई युवती है, कोई गर्भवती महिला है, प्रसव के बाद, और वरिष्ठ जो महिलाएं हैं उनके लिए। तो योग के तरीके क्या अलग होने चाहिए?
0: योग के तरीके बहुत अलग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये कहूंगी कि गर्भवती महिलाओं के लिए योग के तरीके थोड़े अलग हैं।
1: जी जी।
0: उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा घूमे। उनके लिए जो घूमने वाली एक्सरसाइज है वो कंसिस्टेंसी बनी रहे, नियमितता बनी रहे, वो उनके लिए बहुत अच्छी है।
1: बिल्कुल।
0: या वो छोटी छोटी योग कर सकती हैं कि जमीन पर बैठ जाएं, दोनों आलती बना ले, अगर नहीं आलती पालती बना के वो बैठ पा रही हैं या चौकड़ी बना के नहीं बैठ पा रही हैं, तो घुटनों को थोड़ा खुला रखें।
1: जी जी।
0: और दोनों हाथों को बैंड करते हुए लेफ्ट साइड और थोड़ा राइट साइड वो देखें, पूरा मूवमेंट उसमें कमर वाला आता है। बहुत ज्यादा भारी एक्सरसाइजेस गर्भवती महिला को नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अब आप कह रही हैं किशोरी और युवतियों के लिए, तो ये तो बढ़ती उम्र की लड़कियां हैं, इनके लिए सारी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, पर आसान एक्सरसाइज से, आसान योगा से शुरू करें और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली महीने दो महीने जब आसान एक्सरसाइज या आसान योग से आगे बढ़ जाएं तो वो थोड़ा एडवांस योगा कर सकती हैं। बुजुर्ग महिलाएं उतना ही करें जितना उनका शरीर उनको अलाउ करता है।
1: बिल्कुल।
0: एक्सरसाइज योगा लगभग सबके लिए बराबर है, लेकिन प्राणायाम बुजुर्ग महिलाओं को करना बहुत अच्छा रहता है, गर्भवती महिलाओं को करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल बराबर रहना चाहिए।
1: जी,
0: तो अगर वो प्राणायाम करती हैं, अनुलोम विलोम करती हैं, और शॉर्ट फॉर्म में अगर वैसे कहो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उनको रेगुलरली करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक।
1: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि किस तरीके से उम्र के अनुसार अलग अलग योगा के कोई तरीके नहीं है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए कुछ आसान से योग हैं जो वो कर सकती हैं। यही मैम बात आती है कि तनाव, चिंता, नींद की कमी और हार्मोन असंतुलन जैसी जो समस्याएं हैं वो योग में किस प्रकार मदद करती है, क्योंकि अभी के समय में हम देख रहे हैं कि कुछ छोटी बच्चियां हैं उनके भी हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए हैं, अनियमित समय पर महावारी आ रही है, कभी हम देखते हैं कि महीने में 2 बार महावारी आ जाती है, तो ऐसे में योग किस प्रकार से मदद कर सकता है?
0: जहां तक हार्मोनल चेंजेस की बात है, बहुत कुछ हमारी भावनाओं पे निर्भर करता है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत कुछ हमारे माहौल पे निर्भर करता है कि हम किस तरह के माहौल में रह रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, तो नींद का जो ना आना, ये हमारे टेंशन, हमारे इमोशंस, और हम जो एंजाइटी हमको हुई रहती है, या बहुत सारी पढ़ाई की चिंता होती है, करियर की चिंता होती है नवयुवतियों को,
1: बिल्कुल,
0: तो ये सारे जो चीजें हैं ये इंसोमेनिया की तरफ बढ़ाते हैं, नींद ना लाने के लिए जिम्मेदार है।
1: जी हाँ।
0: एक नींद ना आने का कारण केवल तनाव और इमोशंस या टेंशन नहीं है, उसका कारण हमारा डिजिटल लगाव भी है।
1: बिल्कुल।
0: है ना, हम भले माँ से बात ना करें, पिताजी से बात ना करें, लेकिन हमें मोबाइल चाहिए।
1: जी जी,
0: हम मोबाइल से बातें करेंगे। हम खाना खाएंगे तो माइंडफुलनेस के साथ हम खाना नहीं खाते, फोन देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, कई बार तो ये भी नहीं पता चलता
1: कि हम कितना
0: खा क्या रहे हैं और कितना खा गए।
1: बिल्कुल।
0: है ना, जिसकी वजह से ओबेसिटी भी हो रही है।
1: जी जी।
0: फैट भी बढ़ रहा है, फैट मसल्स बढ़ रहे हैं बॉडी में, जबकि मसल्स बढ़ने चाहिए, वो नहीं बढ़ रहे, है ना।
1: बिल्कुल।
0: अब नींद क्यों नहीं आ रही है, जब हम बहुत ज्यादा डिजिटल चीजों के आसपास रहते हैं या उनका उपयोग करते हैं तो हमारे हार्मोन्स में फर्क आता ही आता है।
1: जी जी।
0: तो सबसे अच्छी चीज है कि इसके लिए योगा करें और मेडिटेशन करें।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन खाना खाते समय, सोने से 1 घंटा पहले और जागने के 1 घंटा बाद तक हमें डिजिटल चीजों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो टीवी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, व्हाटएवर जो भी आप यूज करते हैं, उनसे एक घंटे की दूरी बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: अगर जिंदगी में हमने इनको अपना लिया तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हमारे नहीं होंगे, बहुत अच्छे वे में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे।
1: जी जी,
0: तनाव नहीं होगा, नींद बढ़िया आएगी।
1: बिल्कुल,
0: ये करना जरूरी है। अब इसमें मैं एक चीज कहती हूँ, अच्छी नींद आने के लिए अफर्मेशन बहुत जरूरी है। अफर्मेशन का मतलब होता है कि मैंने जो अपने लिए गोल बनाए हैं,
1: उद्देश्य,
0: उनको सोचना कि मैं आज ऐसी हो गई हूँ। मीन्स अच्छी नींद के लिए योगा के साथ साथ जरूरी है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड किया जाए। ट्रेंड किस वे में किया जाए? आप जब सोएं, सोने से 10 मिनट पहले जब आपका चेतन सोएगा और अवचेतन मन जागेगा तो एक उनीदापन जैसा होता है कि बस अब नींद आने ही वाली है।
1: बिल्कुल,
0: उस बीच में आपको अफर्मेशन देना है, वो कल्पना करनी है जो आप चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और जब उसके करते करते आप नींद के आगोश में जाते हैं तो नींद बहुत गहरी आती है और अच्छी आती है।
1: जी हाँ,
0: ये तनाव और चिंताएं, हार्मोनल इम्बैलेंस तभी बढ़ता है जब नींद अच्छी नहीं होती है।
1: बिल्कुल,
0: और नींद अच्छी तब नहीं होती है जब हम अपने आप में नहीं होते, हाँ, उद्देश्य से दूर हो, अपने आप से दूर हो।
1: बिल्कुल मैम।
0: जी
1: जी मैम, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि जो महिलाएं पहली बार योग शुरू करना चाहती हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शुरुआत कैसे करनी चाहिए?
0: ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं इसमें ये कहूंगी कि जो महिलाएं योग शुरू करना चाह रही हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि 10-15 मिनट से वो योगा को समय दें।
1: बिल्कुल,
0: यानी जब शुरुआत कर रही हैं तो 10 मिनट तक, 15 मिनट तक वो मैक्सिमम अपने आप को योग के लिए दें। ज्यादा करेंगी, हमेशा ऐसा होता है कि बहुत देर तक कर लिया योगा, पहले दिन तो हम बहुत बढ़िया कर लेते हैं एक्सरसाइज और योगा, दूसरे दिन फिर जब शरीर दुखता है तो हम हाय तोबा मचाते हैं, फिर योगा करते नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए 10-15 मिनट से शुरू करें, लेकिन नियमित करें। 8 बजे शुरू किया है तो ये कोशिश करें कि 8 बजे से लेके 8:15 बजे तक योगा करना है तो करना ही है। कंसिस्टेंसी जब रहेगी तो योगा का फायदा होगा।
1: बिल्कुल,
0: और कंसिस्टेंसी नहीं है, नियमितता नहीं है, तो योग का फायदा नहीं होने वाला है।
1: बिल्कुल, तो मैम आपने सही कहा। यही अब बात आती है और ढेर सारी बातें आपके माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को जानने मिली है। यही अंत में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरीके से उन्हें योग को अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए?
0: यूं तो जिंदगी में औरतों को या महिलाओं को हाशिए पे भेज दिया है, परिवर्तन आ रहा है कि अब बहुत सारी महिलाएं अपने लिए निर्णय ले रही हैं और आगे भी लेंगी।
1: जी जी,
0: और इसी चीज को ध्यान में रख के मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी तरफ से सब जो बहनें हैं उनको कहूंगी कि उन्हें अपने लिए ज्यादा नहीं तो 15 मिनट निकालने ही निकालने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: वो जो 15 मिनट उनके लिए, वो उनकी क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी जी,
0: क्वालिटी रहेगी तो अपनी फैमिली को भी क्वालिटी टाइम दे पाएंगी, बच्चों को क्वालिटी टाइम दे पाएंगी। मैं स्वस्थ तो जगत स्वस्थ।
1: बिल्कुल,
0: मैं स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ। इस भावना के साथ मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ।
1: बिल्कुल, तो मैम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आज महिलाओं के साथ बात करने का सीधा मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका और आपके रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।
1: थैंक यू,
0: धन्यवाद।
1: मुनजिम की अवड़ापड़ा वेस में विषय विशेषज्ञ जुड़ता कहता ने एना ने माध्यम तक की आपड़ा घनी आकी वाता ने जाण्यो। आशा करा हो कि आ हंगरी वाते आपने गमी होंगा, किम के वे टाइम थे गयो है आपड़ा अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा पण साथे पहले आपने हमारे कार्यक्रम नु पतु बताड़ दो ताकि आज नो कार्यक्रम आपने केवु लाग्यो एने बारे में आप राय सुझाव अमने आली शको अमारे अणा पता माते। अमारो पतु है कार्यक्रम घूमर वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमर अणा फोन नंबर माते। हमारो फोन नंबर है 9414082643। तो बोनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टाइम माते एक नया विषय ने हाते। तारुदी राम राम राम राम।

साथियों, कुछ लोग बहस जी जाते हैं लेकिन रिश्ते हार जाते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचा लेते हैं इसलिए जीवन भर लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। जी हाँ, हर बार सही होना जरूरी नहीं, कई बार साथ होना ज्यादा जरूरी होता है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पाराश्रय। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जहाँ हम हमारे जीवन की उन बातों पर चर्चा करते हैं जो हमारे मन और हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों को गहराई से प्रभावित करती है। आज का विषय है हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ। आज हम बात करेंगे कि रिश्तों में जितना जरूरी है या रिश्ते बचाना। श्रोता साथी, यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है लेकिन यदि हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि कई रिश्ते केवल इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात मनवाना चाहते थे लेकिन एक दूसरे को समझाना नहीं चाहते थे। घर हो, परिवार हो, दोस्ती हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का संबंध हो या समाज में लोगों के बीच जुड़ाव, हर जगह यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर महत्वपूर्ण क्या है, अपनी जीत या रिश्तों की मजबूती। तो बातें इस विषय पर कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि रिश्तों में जीतना जरूरी है या रिश्ते बचाना। श्रोता साथियों, अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि रिश्ते समान विचारों से नहीं बल्कि आपसी सम्मान से चलते हैं। दो लोग कभी भी हर बात पर एक जैसी सोच नहीं रखते। उनकी पसंद अलग होती है, उनके अनुभव अलग होते हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं और यह जीवन की सच्चाई है। जी हाँ, समस्या तब शुरू होती है दोस्तों, जब हम अपनी सोच को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं। कहते हैं ना कि रिश्ते तर्क से नहीं विश्वास से चलते हैं, और विश्वास तब बनता है जब हम सुनना सीखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर बहस जीतना चाहता है वो कई बार जीवन के सबसे सुंदर रिश्ते हार जाता है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि रिश्तों को जीतना हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम रिश्तों को छोड़कर खुद जीतना क्यों चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार हमारी इच्छा सच जानने की नहीं होती बल्कि सही साबित होने की होती है। हमें लगता है कि यदि हमने अपनी बात नहीं मनवाई तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन सोचिए कि क्या हर बहस में जीतने के बाद भी मन खुश रहता है? क्या सामने वाले की चुप्पी हमेशा सहमति होती है? कई बार लोग बहस बंद कर देते हैं लेकिन दिल से दूर हो जाते हैं, और यही दूरी धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में सबसे ज्यादा जरूरी किसी चीज की होती है तो वह है रिश्तों की। परिवार में और भी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि रिश्तों की समझ होना, धैर्य की समझ होना, संवाद की समझ होना, क्योंकि परिवार कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां हर दिन कोई विजेता चुना जाए। परिवार वह जगह है दोस्तों जहां लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यदि घर में हर व्यक्ति केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा तो वहां अपनापन कम होगा, तनाव अधिक हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं ना कि पति पत्नी का रिश्ता भी जीत और जिद का है। कई बार पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, विषय बड़ा नहीं होता लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? अहंकार होता है। दोनों सोचते हैं कि पहले सामने वाला चुके, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब कोई एक व्यक्ति यह सहने का साहस रखता है। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, यह हार नहीं होती है, यह रिश्ते के प्रति सम्मान होता है, क्योंकि माफी मांगना हमेशा गलती की निशानी नहीं होता, कई बार यह रिश्तों को महत्व देने की निशानी होता है। इसी के साथ बात आती है, दोस्ती में जीत नहीं भरोसा जरूरी है, क्योंकि सच्ची दोस्ती में यह मायने नहीं रखता कि कौन सही है, बल्कि ये मायने रखता है कि कठिन समय में कौन साथ खड़ा था। यदि हर छोटी बात पर हिसाब रखा जाए तो दोस्ती बोझ बन जाती है, लेकिन यदि रिश्तों में विश्वास और उदारता हो तो वह समय की हर परीक्षा पार कर लेती है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि रिश्तों में जीतना जरूरी नहीं है, रिश्ते बचाना जरूरी है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको ढेर सारी बातों से अवगत करवाया था कि किस तरीके से परिवार में सबसे ज्यादा जरूरत समझ की, धैर्य की और संवाद की होती है, और इसी तरीके से ये सारी चीजें पति पत्नी के रिश्ते में, दोस्ती के रिश्ते में और समाज में भी लागू होती है। अब यही बात करें कि समाज में आजकल दूरियां क्यों बढ़ रही है, तो आज का समाज जो है श्रोता साथियों, उसमें लोग पहले से अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस बढ़ रही है, लोग बिना पूरी बात समझे निर्णय सुना देते हैं, असहमति को दुश्मनी समझ लिया जाता है। ऐसे समय में रिश्ते बचाने की कला पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हमें ये सीखना होगा कि अलग विचार रखने वाला व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि हर असहमति रिश्ते का अंत नहीं होती, कई बार वही रिश्तों को गहरा समझने का अवसर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सम्मान बचा रहता है वहाँ रिश्ता भी बचा रहता है। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि बच्चों को बचपन से ही हमें ढेर सारी चीजें सिखानी है। बच्चों को हमें ये नहीं सिखाना चाहिए कि हर हाल में जीतना है, उन्हें ये सिखाना चाहिए कि कैसे सुनना है, कैसे समझना है, कैसे अपनी बात को सम्मान से रखना है, कैसे मतभेद होने पर भी संबंध बनाए रखने हैं। यही जीवन की असली शिक्षा है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर रिश्ते किसी एक बड़ी घटना से नहीं टूटते, वे टूटते हैं अनसुनी बातों से, अनकहे दुखों से, बार बार हुए अपमान से, और उस भावना से कि सामने वाला हमें समझना ही नहीं चाहता। इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए बड़े प्रयास नहीं, बल्कि छोटे छोटे संवेदनशील व्यवहार की जरूरत होती है। जी हाँ, रिश्ते बचाने का मतलब यह नहीं है कि हर अन्याय सह लिया जाए। यदि बात सम्मान, सुरक्षा, सच्चाई या आत्मसम्मान की हो तो अपनी बात दृढ़ता से रखना भी आवश्यक है, लेकिन जहाँ केवल अहंकार की लड़ाई हो वहाँ जीत की जगह समझदारी चुनना बेहतर होता है। क्योंकि दोस्तों, खुद से आप जरा पूछिएगा कि 5 साल बाद यह बहस कितनी महत्वपूर्ण होगी। यदि उसका उत्तर बहुत कम है तो शायद उस रिश्ते को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जीवन के अंत में लोग ये याद नहीं रखते कि उन्होंने कितनी बहसें जीती हैं। लोग ये याद रखते हैं कि उनके साथ कौन खड़ा रहा, किसने उनका साथ दिया, किसने उन्हें समझा, किसने कठिन समय में उनका हाथ थामा। रिश्ते की खूबसूरती जीत में नहीं बल्कि अपनत्व में छिपी होती है। इसलिए जब भी जीवन आपको किसी रिश्ते, अपने अहंकार में से एक चुनने की स्थिति में लाए, तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी नरमी, एक शांत शब्द और एक कदम पीछे हट जाना उस रिश्ते को बचा सकता है, जो किसी भी बहस की जीत से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो श्रोता साथियों, रिश्ते पेड़ों की तरह होते हैं, उन्हें बढ़ने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने में कुछ पल ही काफी होते हैं। इसलिए हर बार ये मत सोचिए कि कौन सही है, कभी ये भी सोचिए कि कौन अपना है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत वह नहीं है जो हमें दूसरों पर मिले, बल्कि वह है जो हमें अपने अहंकार पर मिले। और जिस दिन हम यह जीत हासिल कर लेते हैं दोस्तों, यकीन मानिए उस दिन हमारे रिश्ते, हमारा जीवन दोनों अधिक सुंदर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने रिश्ते को बचाइए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, क्योंकि परिवार में जब हम रहते हैं तो मनमुटाव तो होता ही है, लेकिन उस मनमुटाव में हम रिश्ते तोड़ दें ये बहुत गलत बात है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते सम्मान, विश्वास और धैर्य की मिट्टी में पनपते हैं। जहाँ केवल अहंकार होता है वहाँ संबंध धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ एक दूसरे के लिए जगह होती है वहाँ मतभेद भी रिश्तों को नहीं तोड़ते। इसलिए अपने जीवन में ऐसा वातावरण का निर्माण कीजिए जहाँ लोग आपकी बातों से नहीं, आपके व्यवहार से अपनापन महसूस करें। जी हाँ, जब जीवन की शाम आएगी तब हमें याद नहीं रहेगा कि हम कितनी बहसों में जीते थे, लेकिन यह जरूर याद रहेगा कि किन लोगों ने हमारे जीवन को अर्थ दिया था। इसलिए रिश्तों को जीत और हार की कसौटी पर मत तोलिए, उन्हें समझ, संवेदना और विश्वास के डोर से जोड़िए, क्योंकि कई बार एक रिश्ता बचा लेना 100 बहसें जीत लेने से कहीं बड़ी उपलब्धि होती है। और जो इंसान लोगों के दिलों को संभालना सीख जाता है वह जीवन की सबसे अमूल कला सीख जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी।
अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
2: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
2: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है मानवतावादी दिवस यानी कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी जानते हैं मनीषा कि जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी दुखी को सहारा मिलता है और किसी घायल को उपचार मिलता है, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद मिलती है, तब मानवता अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है।
0: जी बिल्कुल,
1: दुनिया में विज्ञान, तकनीक और विकास चाहे कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, यदि इंसान के भीतर मानवता नहीं है मनीषा, तो वह विकास अधूरा है।
0: जी
1: मानवतावादी दिवस हमें याद दिलाता है कि इंसान होने का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। मानवतावादी दिवस उन सभी लोगों को सम्मान देने का दिन है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। यह दिवस हमें सिखाता है कि समाज में बदलाव केवल बड़ी संस्थाएं नहीं लाती, बल्कि आम लोग भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं विश्व मानवतावादी दिवस पर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मानव जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। मनुष्य की असली पहचान उसके ज्ञान पद से नहीं होती श्रोता साथियों, बल्कि उसके व्यवहार, संवेदनशीलता, करुणा और दूसरों के प्रति सहयोग से होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता करता है साथियों, किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनता है, किसी आपदा में फंसे लोगों के लिए मदद करता है या बिना किसी स्वार्थ के काम आता है साथियों, तब हम देखते हैं कि वह मानवता का परिचय देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी मानवीय भावनाओं को सम्मान देने और समाज में मानवतावादी की जो सोच है उसे बढ़ावा देने के लिए साथियों 19 अगस्त यानी कि आज ही के दिन विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस हमें यह याद दिलाता है अंजलि जी कि दुनिया में अनेक लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, गरीबी, भूखमरी, विस्थापन और अन्य कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में मानवता की भावना ही श्रोता साथियों लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। यह दिवस उन सभी लोगों के लिए सम्मान व्यक्त करने का दिन है साथियों, जो कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सहायता करते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, मानवता का अर्थ केवल दया या सहानुभूति नहीं है, मानवता का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, जरूरतमंद की मदद करना, हर व्यक्ति के सम्मान और अधिकारों का आदर करना और बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करना। क्योंकि मनीषा, जब हम किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं, किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाते हैं, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करते हैं या किसी संकट में फंसे परिवार का साथ देते हैं, तब हम मानवता का परिचय देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मानवता हमें यह सिखाती है कि समाज तभी मजबूत बनता है जब लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं। केवल अपने लिए जीना जीवन नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी और उम्मीद लाना ही सच्ची मानवता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, कहीं युद्ध है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं गरीबी है तो कहीं भुखमरी है। ऐसे समय में मानवता का महत्व और भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: मानवतावादी दिवस हमें याद दिलाता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि लोग एक दूसरे का हाथ थाम ले तो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यह दिवस हमें संदेश देता है कि हर इंसान समान है, जरूरतमंद की सहायता करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और समाज में प्रेम, भाईचारा और सहयोग को बढ़ाना भी आवश्यक है। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और किसी प्रकार का भेदभाव मानवता के विरुद्ध है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांवों में मानवता की जो भावना है वो सदियों से दिखाई दे रही है। जब किसी किसान की फसल खराब होती है तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है। किसी परिवार में शादी हो या संकट हो, लोग मिलकर सहयोग करते हैं। यही सामुदायिक जीवन जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मनीषा, पहले गाँव में श्रमदान की परंपरा होती थी, लोग जो है वो मिलकर कोई भी गांव की समस्या हो, जैसे कि तालाब बनाना हो तो बनाते थे, रास्ते सुधारना हो तो सुधारते थे और जरूरतमंद परिवारों की सहायता करते थे। यह मानवतावाद का जीवंत उदाहरण था। आज बदलती जीवन शैली के कारण लोग व्यस्त हो गए हैं, लेकिन फिर से सामूहिक सहयोग और मानवीय मूल्यों को मजबूत बनाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि मानवता की आवश्यकता क्यों है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। विज्ञान और तकनीकी ने लोगों को एक दूसरे के करीब तो लाया है साथियों, लेकिन इसके बावजूद अनेक लोग हैं वो गरीबी, भूखमरी, बीमारी, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं, साथ ही विस्थापन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
1: जी जी।
0: कहीं बाढ़ से लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है, कहीं भूकंप के कारण अंजलि जी हम देखते हैं कि कई परिवार है वो कुछ लोगों को खो देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कहीं सूखा, भोजन की कमी और कई सारी कठिनाइयां हैं उनका सामना करना पड़ता है। संघर्ष और हिंसा के कारण भी हम देखते हैं श्रोता साथियों को इसका भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि केवल सरकार की सहायता पर्याप्त नहीं होती, समाज के प्रत्येक व्यक्ति, स्वयंसेवी संगठन, चिकित्सक, शिक्षक, राहत कर्मी और आम नागरिक की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
1: जी हाँ।
0: मानवता का भाव ही श्रोता साथियों लोगों को आगे बढ़कर सहायता करने के लिए प्रेरित करता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान रहे हैं कि मानवतावाद क्या है और किस तरीके से पहले के समय में इसकी भूमिका अलग थी और अभी के समय में लोगों की जीवन शैली और बहुत सारी चीजें बदलने के कारण हम देख रहे हैं कि मानवता की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में हमें फिर से प्रयास करके इसे जीवित करना होगा और लोगों को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है कि मानवता ही सच्चे धर्म का आधार है। तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में है।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यहीं आपको कहना चाहेंगे कि युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: युवाओं में मानवता, संवेदनशीलता और सेवा की भावना विकसित हो जाए मनीषा,

0: तो समाज तेजी से बदल सकता है। युवा कार्यों के माध्यम से मानवता का परिचय दे सकते हैं, जैसे कि रक्तदान शिविरों में भाग लेना, गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनका जो भविष्य है वो सुधारना, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना, बुजुर्गों की सहायता करना, सामाजिक जो जागरूकता है उन अभियानों से जुड़ना, आपदाओं के समय राहत कार्यों में सहयोग करना। जब युवा अपने ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं तब वे सच्चे मानवतावादी बनते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा हमें अच्छा इंसान बनाना भी सिखाती है। यदि किसी व्यक्ति के पास डिग्री हो तो वह कह सकते हैं कि अंदर से करुणा, संवेदनशीलता, नैतिकता ही नहीं बल्कि उनकी जो चीजें हैं उनको लेकर भी आगे बढ़ता है। विद्यालय और परिवारों को बच्चों को बचपन से ही मानवता, सहयोग, सेवा का महत्व सिखाना चाहिए। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि सफलता केवल स्वयं आगे बढ़ने में नहीं बल्कि दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने में है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें कि मानवतावादी कार्यकर्ताओं की इसमें क्या भूमिका है उसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि मानवतावादी कार्यकर्ता समाज के उन लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम करते हैं जिन्हें उनकी सबसे जरूरत होती है। कई बार वे ऐसे क्षेत्र में भी जाते हैं साथियों जहां सामान्य परिस्थिति में पहुंचना बहुत कठिन होता है। राहत कार्यकर्ता भोजन और पानी पहुंचाते हैं, डॉक्टर है वो स्वास्थ्य डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी है श्रोता साथियों, वो बीमार और साथ ही घायल लोगों की मदद करते हैं, स्वयंसेवी राहत सामग्री बांटते हैं, शिक्षक बच्चों की शिक्षा जारी रखने का प्रयास करते हैं और सामाजिक संगठन प्रभावित करने से लोग हैं वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि इन सभी कार्यों के पीछे एक ही भावना होती है, जरूरतमंदों की मदद करना। साथियों हम देखते हैं कि मानवतावादी कार्यकर्ता का योगदान हमें यह सिखाता है कि दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा बड़ी संपत्ति या किसी विशेष पद की आवश्यकता नहीं होती है। सच्ची इच्छा और संवेदनशील सोच हो श्रोता साथियों तो हम सामान्य व्यक्ति होकर भी समाज के योगदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं। हम देखते हैं कि मानवता की शुरुआत ही वो संवेदनशीलता से होती है। जब हम दूसरे व्यक्ति की परेशानी को समझने का प्रयास करते हैं तब साथियों हम देखते हैं कि हमारे भीतर है वो मदद की भावना पैदा होती है। आज की व्यस्त जिंदगी में अंजलि जी हम देखते हैं कि लोग अपने काम और समस्याओं में इतने उलझ गए हैं कि दूसरों पर ध्यान ही नहीं देते। कभी कभी आसपास के लोगों की परेशानियों पर ध्यान भी हमें देना चाहिए साथियों। ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे बीच जो संवाद की भावना है, भाईचारे की भावना है, वो सब मजबूत होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आज मानवता कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ता स्वार्थ, सामाजिक भेदभाव, हिंसा, असहिष्णुता, डिजिटल दुनिया में बढ़ती संवेदनहीनता, आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय संकट। श्रोता साथियों इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने भीतर मानवीय मूल्यों को मजबूत करना होगा। हमें ये समझना होगा कि तकनीक और धन महत्वपूर्ण है लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है इंसानियत। मानवता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं तो हमें जरूरतमंदों की यथासंभव सहायता करनी है, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना है, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, समाज सेवा के कार्यों में भाग लेना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, बुजुर्गों का सम्मान करना है, प्रकृति और जीव जंतु के प्रति संवेदनशील रहना है, सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित करनी है। श्रोता साथियों छोटे छोटे मानवीय कार्य समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मानवतावादी दिवस केवल एक कैलेंडर में दर्ज एक विशेष दिन नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा तय करने वाला संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान हमारे पद, धन या उपलब्धियों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और मानवीय मूल्यों से बनती है। जब कोई व्यक्ति किसी अजनबी की मदद करता है, जब कोई युवा समाज के लिए समय निकालता है, जब कोई परिवार जरूरतमंदों के लिए अपने संसाधन साझा करता है तब मानवता जीवित रहती है। दुनिया को आज पहले से अधिक संवेदनशील दिलों, सहयोगी और हाथों और करुणामयी सोच की आवश्यकता है। मानवतावादी दिवस मनीषा हमें यह संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम केवल अच्छे नागरिक ही नहीं बने बल्कि अच्छे इंसान भी बने, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपने जीवन को त्याग दिया और उन लोगों के जीवन में उजाला फैलाने का प्रयास किया। यही मानवता की सबसे बड़ी विजय है और यही एक बेहतर, शांतिपूर्ण और खुशहाल समाज की आधारशिला है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि मानवता हमें समानता का संदेश देता है। इंसान की पहचान उसकी जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति से श्रोता साथियों नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार रखता है। यदि समाज में भेदभाव कम कम हो और लोगों के बीच सहयोग की भावना है वो बड़ी, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि समाज ही वो अधिक मजबूत बन सकता है।
0: जी जी।
1: मानवतावादी सोच श्रोता साथियों हमें दूसरों से छोटा समझने के बजाय व्यक्ति के सम्मान को महत्व देना सिखाता है। हम देखते हैं कि समाज में सभी लोगों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, कुछ परिवारों के पास पर्याप्त साधन होते हैं, जबकि अंजलि जी हम देखते हैं कि कुछ परिवारों के पास उनकी मूलभूत जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं।
0: जी जी।
1: ऐसे लोगों के प्रति हमारा दायित्व है साथियों कि हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना काम है वो करें और दूसरों की मदद करें।
0: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं, ये बातें निरंतर और भी कार्यक्रम में यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे विश्व मानवतावादी दिवस को लेकर, यहीं अगर बात करें अंजलि जी महिलाओं की भूमिका की जी। तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि मानवतावादी कार्यों में महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं परिवार और समाज दोनों स्तरों पर संवेदनशील और सहयोग की भावनाओं को मजबूत करती हैं। आपदा के समय महिलाओं और बच्चों का विशेष जरूरतों की जरूरत ही वो एक महिला ही समझ पाती है। महिला स्वयं सेवी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऐसे मामलों में अपनी भूमिका निभा सकती है जहां उनकी जरूरतें ज्यादा होती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवा मानवता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य कर्मचारी लोगों के जीवन में लोगों के जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम सभी को ये समझना जरूरी है कि मानवता किसी बड़े अवसर का इंतजार नहीं करती। इसके लिए हमारे पास बहुत धन, बड़ा पद या विशेष अधिकार होना जरूरी नहीं है। मानवता हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहारों में दिखाई देती है। किसी से सम्मान पूर्वक बात करना, किसी की परेशानी को ध्यान से सुनना, गलती करने वाले को सुधारने का अवसर देना, किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक न उड़ाना और जरूरत के समय किसी का साथ देना, ये सभी मानवता के ही रूप है।
0: जी हाँ,
1: हम अक्सर समाज में बदलाव लाने के लिए किसी बड़े नेता, संस्था या व्यवस्था की ओर देखते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन हमारे अपने व्यवहार से शुरू होता है।
0: जी
1: यदि एक व्यक्ति अपने परिवार में सम्मान और प्रेम का वातावरण बनाता है, दूसरा अपने गांव में सहयोग की भावना बढ़ाता है, कोई युवा किसी बच्चे को पढ़ने में मदद करता है और कोई बुजुर्ग अपने अनुभव से नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है, तो धीरे धीरे पूरा समाज बदलने लगता है। मानवता का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि इसे देने से यह कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। एक मुस्कान दूसरे चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, एक अच्छा शब्द किसी टूटे मन को संभाल सकता है और एक छोटा सा सहयोग किसी व्यक्ति को फिर से खड़े होने की ताकत दे सकता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा छोटा प्रयास क्या बदलाव ला पाएगा।
0: जी हाँ,
1: इतिहास में बड़े परिवर्तन अक्सर छोटी छोटी कोशिशों से ही जन्म लेते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि मानवता का संबंध केवल इंसानों से नहीं बल्कि उस प्रकृति से भी है जिसमें हम रहते हैं। स्वच्छ हवा, पानी, मिट्टी और हरियाली हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, कचरे का उचित तरीके से निपटान करना और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो श्रोता साथियों उसका प्रभाव है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों पर और मनुष्य जीवन पर पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना भी मानवता की रक्षा करना है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के संचार ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। किसी घटना की जानकारी कुछ समय में श्रोता साथियों पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है, लेकिन डिजिटल माध्यमों के साथ साथ जिम्मेदारी भी श्रोता साथियों जरूरी है। संकट के समय गलत सूचना, अफवाहें या भ्रामक खबरें जो है वो लोगों में डर या भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए हमें किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले श्रोता साथियों उसकी उचित जानकारी या हमें उसकी सच्चाई की जांच करनी है। डिजिटल दुनिया में मानवता का अर्थ श्रोता साथियों सही जानकारी देना, दूसरों का सम्मान करना, ऑनलाइन अपमान से बचना और जरूरत के समय दूसरों की मदद करना ही सच्ची मानवता है।
1: बिल्कुल मनीषा, जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को केवल प्रतियोगिताओं में आगे न निकालना सिखाएं, बल्कि उन्हें यह भी सिखाएं कि रास्ते में पीछे छूट रहे व्यक्ति का हाथ कैसे थामा जाता है। उन्हें सफलता के साथ संवेदनशीलता, अधिकारों के साथ जिम्मेदारी और स्वतंत्रता के साथ दूसरों के सम्मान का महत्व समझाना होगा, क्योंकि आने वाला समाज उन्हीं बच्चों से बनेगा जिनके मन में दूसरों के लिए स्थान होगा। मानवता हमें प्रकृति से भी जुड़ाना सिखाती है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और जल स्रोतों के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी हमारे मानवीय कर्तव्यों का हिस्सा है। जब हम पानी बचाते हैं, पेड़ लगाते हैं, किसी प्यासे पशु के लिए पानी रखते हैं या अपने आसपास की गंदगी को साफ करते हैं, तब हम केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे होते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन की रक्षा कर रहे होते हैं। इसलिए मानवतावादी दिवस को केवल एक दिन मनाने के बजाय हमें इसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि आज मेरे कारण किसी दूसरे इंसान के जीवन में क्या अच्छा हुआ। यदि इस सवाल का जवाब हमारे पास हर दिन हो तो समझिए श्रोता साथियों कि हम वास्तव में मानवता के रास्ते पर चल रहे हैं। आज से हम अपने आसपास के लोगों को थोड़ा और समझने, थोड़ा और सम्मान देने और जरूरत के समय थोड़ा और साथ खड़े होने की कोशिश करें। किसी के जीवन की पूरी समस्या हम शायद हल न कर पाए, लेकिन उसके कठिन समय में उसके साथ खड़े होकर उसे एक एहसास करा सकते हैं कि वह अकेला नहीं है। क्योंकि एक बेहतरीन दुनिया केवल बड़े बदलावों से नहीं बनती, बल्कि उन छोटे छोटे अच्छे व्यवहारों से बनती है जिन्हें हम बिना किसी स्वार्थ के रोज अपने जीवन में अपनाते हैं। जब हमारे साथ मदद के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी आवाज में हौसला होता है, हमारा दिल दूसरों के लिए धड़कने लगता है, तभी मानवता वास्तव में हमारे जीवन का हिस्सा बनती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही बात करी शांति और मानवता का क्या संबंध है इसकी। तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि शांति के बिना मानव विकास संभव नहीं है। जहाँ संघर्ष और हिंसा होता है साथियों, वहाँ सबसे अधिक नुकसान है वो आम लोगों पर पड़ता है। बच्चे अपनी पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, परिवार विस्थापित नहीं हो पाते हैं और लोगों को सामान्य जीवन है वो भी प्रभावित होने लगता है। मानवतावादी सोच हमें संवाद, सहयोग और शांति का रास्ता अपनाने की प्रेरणा देती है। मतभेद होना स्वाभाविक है श्रोता साथियों, लेकिन उन्हें समझदारी और बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। कहना चाहेंगे साथियों कि मानवता के लिए हमेशा किसी बड़े अभियान की जरूरत नहीं होती। इसकी शुरुआत हमारे घर से या आसपास के क्षेत्र से भी हो सकती है। घरों में बुजुर्गों का सम्मान करना, बच्चों की बात सुनना, परिवार के सदस्यों की मदद करना, पड़ोसियों की परेशानियों में साथ देना और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए श्रोता साथियों संवेदनशील होना ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और आगे बढ़ने का एक कदम हो सकता है। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास 5-10 लोग मिलकर अगर यह सकारात्मक संदेश फैलाए, लोगों को जागरूक करे और जरूरतमंदों की मदद करे, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारा समाज है वो और मजबूत बन सकता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसके लिए हम सभी को एक ही सोच अगर हमारी नहीं रहती है तो भी हर किसी की अच्छी बातों से सहमत होने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब तक हम सही चीज को लेकर सहमत नहीं होंगे, तब तक हमारी जो मानवता की चीजें हैं वो सफल नहीं हो पाएंगी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, जीवन में अगर हमें मानवता को फिर से जीवित रखना है तो खुद से ऊपर उठकर हमें दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत है। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला करते हैं, हमारी जो व्यस्त जीवन शैली है उस से कुछ समय निकालकर हम हमारी प्रकृति के लिए सोचें, कुछ ऐसा कार्य करें जो हमारे देश के हित में हो, तो वही सच्ची मानवता है। तो इसी तरह इस विषय पर और भी महत्वपूर्ण बातें यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की और इस गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना। यही आपको कहना चाहेंगे कि मानवता की असली परीक्षा तब नहीं होती जब परिस्थितियां आसान हो, बल्कि मनीषा तब होती है जब हमारे सामने किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानी दिखाई देती है और हमारे पास उसे अनदेखा करके या उसकी मदद करने दोनों में से किसी एक को चुनने का अवसर होता है। उस समय हमारा निर्णय ही बताता है कि हमारे भीतर इंसानियत कितनी गहरी है। हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग होते हैं जिन्हें किसी बड़ी चीज की नहीं, केवल थोड़े से सहयोग की जरूरत होती है। किसी बुजुर्गों को कुछ देर बातचीत चाहिए, किसी बच्चे को प्रोत्साहन चाहिए, तो किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन चाहिए, किसी जरूरतमंद परिवार को सहयोग चाहिए और किसी परेशान व्यक्ति को बस इतना सुनना होता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कई बार हमारे लिए ये छोटी सी बात होती है, लेकिन सामने वाले के लिए यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हमें अपने समाज में ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी जहां मदद मांगने वाले व्यक्ति को कमजोर न समझा जाए और मदद करने वाले व्यक्ति को महान बनने की जरूरत महसूस न हो। क्योंकि श्रोता साथियों, सहायता हमारे सामाजिक जीवन की स्वाभाविक आदत होती है। जब पड़ोसी पड़ोसी की चिंता करे, गांव गांव के जरूरतमंद परिवार के साथ खड़ा हो, युवा समाज की जिम्मेदारी समझे और बच्चे बचपन से समझदारी सीखे, तब समाज में विश्वास मजबूत होता है। मानवतावादी सोच हमें यह भी सिखाती है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी आर्थिक स्थिति, काम, पहनावे या सामाजिक पहचान से तय नहीं किया जा सकता। और व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। हमारे शब्द किसी के मन को चोट भी पहुंचा सकते हैं और उसे संभाल भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना, किसी की परिस्थिति समझे बिना निर्णय न देना और किसी की कमजोरी को उसकी पहचान न बनने देना भी मानवता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल। कई बार अंजलि जी, हम सोचते हैं कि हमारे अकेले के प्रयास करने से क्या हो जाएगा, हमारे अकेले के प्रयास करने से दुनिया तो नहीं बदल सकती, ये सोच हमारे अंदर रहती है। यह बात श्रोता साथियों सही हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। एक व्यक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकता है, एक शिक्षक किसी बच्चे का भविष्य बदल सकता है, एक डॉक्टर किसी मरीज को बेहतर जीवन दे सकता है, एक युवा है वो अभियान चलाकर समाज सेवी का काम कर सकता है, एक परिवार जरूरतमंद की सहायता कर सकता है। श्रोता साथियों, छोटे छोटे प्रयास जब बड़ी संख्या में लोग मिलकर करते हैं तो उसका प्रभाव अंजलि जी हमें बड़ा देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत में मानवता की सेवा की भावना है वो लंबे समय तक चली आ रही है। यहाँ अतिथि संस्कार, जरूरतमंदों की सहायता, सामूहिक सहयोग और सेवा को हमेशा महत्व दिया गया है। गांव में भी श्रोता साथियों, संकट के समय लोग एक दूसरे के घरों में खड़े होते हैं। विवाह, बीमारी, पारिवारिक आपदाएं या किसी अन्य कठिन परिस्थितियों में सामुदायिक सहयोग की भावना है वो देखने को मिलती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आज जब लोग अपने काम और परेशानियों में इतने व्यस्त हैं कि कई बार पास बैठे व्यक्ति की तकलीफ भी नहीं दिखाई देती, ऐसे समय में संवेदनशील बनने रहना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास नजर रखनी होगी कि कौन सा बच्चा स्कूल से दूर हो रहा है, कौन सा बुजुर्ग अकेला है, किस परिवार को किसकी सहायता की जरूरत है, कौन व्यक्ति निराश होकर चुप बैठा है। इन सवालों को पहचानना और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करना ही एक जिम्मेदार समाज की पहचान है। और याद रखिए कि मानवता का अर्थ हमेशा आर्थिक सहायता देना नहीं होता। समय देना भी मानवता है, ज्ञान बांटना भी मानवता है, सही जानकारी देना भी मानवता है, किसी को सम्मान देना भी मानवता है और किसी के अधिकार के लिए आवाज उठाना भी मानवता है। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति यह न सोचे कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ जरूर होता है जिससे वह किसी दूसरे के जीवन को बेहतर बना सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इस अवसर को केवल श्रोता साथियों भाषण और कार्यक्रम तक सीमित न रखें, अपने परिवार में एक अच्छा व्यवहार शुरू करें, अपने गांव में किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जहां किसी व्यक्ति को अपनी परेशानी बताते हुए डर्म शर्म महसूस न हो। मानवता की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें देने वाला और पाने वाला दोनों समृद्ध होते हैं। जब हम किसी के जीवन में थोड़ी राहत, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी खुशी जोड़ते हैं तो वास्तव में हम अपने समाज को मजबूत बनाते हैं। तो साथियों, आज अपने मन में एक छोटा सा संकल्प जरूर रखें, हम किसी को उसकी कमजोरी से नहीं उसकी इंसानियत से पहचानेंगे। हम किसी को परेशानी देखकर मुंह नहीं मोड़ेंगे और जहां हमारे हाथ किसी के काम आ सके वहां हम अपनी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि समाज की असली ताकत ऊंची इमारतों, बड़ी सड़कों या आधुनिक सुविधाओं में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में होती है जो एक दूसरे के लिए खड़े रहना जानते हैं। यही संवेदना हमारे गांवों को मजबूत करेगी, यही सहयोग हमारे समाज को जोड़ेगा और यही सोच आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी दुनिया देगी जहां इंसान की पहचान उसके पास क्या है से नहीं, बल्कि वह दूसरों के लिए क्या करता है इससे होगी।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारे कार्यक्रम का पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार
1: साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम

आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का जो सिलसिला है वो हमारा आपके साथ रोज़ाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश के गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप SMS करके हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643 पर। साथियों आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल और आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहाँ का आपको नाम लिखना है। साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। नंबर फिर से बताना चाहूँगी 9414082643 पर। तो दोस्तों हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों हमारी पहली फरमाइश का गीत आया है पाटीकला से, फिल्म का नाम है बताना चाहूँगी दोस्तों सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में पार्टी कला से है भूमिका कुमार, नरेश चौहान, मनोज कुमार मीणा, मेघराज मीणा जी, सुरेश चौहान, विक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह चौधरी, चंद्रपाल राय प्रसाद जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं धनपुरा से लक्ष्मण चौधरी, चंद्रपाल राय प्रसाद जी, महावीर जी, देवीलाल, राजाराम, मनसाराम, संदीप जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं पार्टी कला से सत्येंद्र, नरेश चौहान, जयशवर्धन मनारिया, सत्यम मीणा, शिवम, संजीव, कमलेश, रोहित, वजेंद्र, अरुण जी, गणेश लाल, जसवंत, संजय, अखिलेश, हेमराज मीणा जी, चरण सिंह जी और श्याम प्रसाद जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं गांटोल से पुष्पा कुमार, हेमंत टेलर, आशाराम, रमेश लाल, प्यारे लाल, श्याम लाल, घनश्याम जी, राधेलाल, लालाराम, अरविंद, राहुल, जसवंत और मेघराज मीणा, कपिल शर्मा जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, एक मुलाकात जरूरी है सनम, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत है, हमारे बीच आया है, फिल्म का नाम है ताल, गीत के बोल है ताल से ताल मिला। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में घाटोल से, श्याम प्रसाद, चरण सिंह जी, हेमराज मीणा जी, जसवंत कुमार, संजय, अखिलेश जी, नीलेश जी, गणेश लाल जी, और भी दोस्त इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, कमलेश जयपुरिया, संजीव डाबे राव, शिवम सत्यम मीणा, जसवर्धन मीनारिया, नरेश चौहान, सत्येंद्र चौहान जी, बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, और भी साथी जुड़ रहे हैं हमारे बीच जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। गंजड़वारा उत्तर प्रदेश से हैं एड नाशिद शेख, नाजर नाशिद, शादिद शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखल मुजावर जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं ताल से ताल मिला।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, ताल से ताल मिला, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोल हैं ओढ़ नहीं ओढ़ के नाचू। फरमाइश करता है इस गीत के जो सुनना चाह रहे हैं, इस गीत को नाम बताना चाहूँगी। पाड़ी कला से जुड़ना चाह रहे हैं नरेश चौहान, जयवर्धन मीनारिया जी, सत्यम मीणा, शिवम जी, संजीव कमलेश जी, रौधे राव जी और भी हमारे श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, बड़ोदिया से जुड़ना चाह रहे हैं सतराम हीरालाल जी, हेमंत आकाश, देवेश जी, विपिन शर्मा जी और हरेंद्र विकास दलपत्य, श्यामलाल रामलाल, पंकज जी, राहुल शर्मा, मेघराज मीणा जी और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गाटोल से सतराम, संजय, सीताराम, सत्यम, कल्याण गाटोल से मोहन जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। गाटोल से ही संतोष शिरोमान, प्रदीप आनंद, धर्मराज, हरिशंकर, हेमराज मीणा जी और घनश्याम जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। जैसा कि दोस्तों, फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसी बीच अगली फरमाइश हमारे बीच आई है। मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, ये फरमाइश हमारे बीच आई है तलवाड़ा से। फिल्म का नाम है साथियों दीवाना, गीत के बोल है सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, कल्याण से जुड़ना चाह रहे हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगम प्रदीप प्रजापति, प्रतिभा शर्मा जी। इसी बीच और भी साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। जुड़ रहे हैं सतराम, हीरालाल, हेमंत, आकाश, देवेश जी, विपिन शर्मा जी, हरेंद्र विकास, दलपत्य, श्यामलाल, रामलाल, पंकज और राहुल शर्मा, मेघराज मीणा जी। जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त तलवाड़ा से, पन्नालाल, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश प्रसाद, बंटी प्रजापत, मनोहर, हनुमंत, ओमकार रावत जी। सुरपुर से हैं सीताराम, राधेलाल, दिनेश चंद्र, विशाल, संतेश पांडे, मेघराज मीणा जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं कुशलगढ़ से ही, अभिषेक कटारा, हरिचरण कुमार, महेंद्र डामोर, सीताराम, सुनेन्द्र चौहान, श्याम सुंदर, शंकर, दीप चंद्र, प्रकाश जी, हरिशंकर, दयाराम प्रजापति, हरेंद्र कुमार जी। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बड़ोदिया से। फिल्म का नाम है सुर, गीत के बोल है कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आना। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में मेघराज मीणा, सतीश पांडे जी, दिनेश चंद्र, राधेलाल, सीताराम, ओमकार रावत, हनुमत मनोहर, बंटी प्रजापत जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कुशलगढ़ से ही आनंद सतीश कुमार, अखिलेश जी, भोलाबाई भैयालाल, शिवम कुमार जी, अभिनव कुमार जी, राम सहाय, राकेश, राम सेवक, सत्येंद्र, रविंद्र, शैलेश, मेघराज मीणा जी और श्यामलाल जी। रायबरेली से श्रोता साथी हैं मेघराज मीणा, प्रेम डामोर, अक्षय डामोर, अरुण सुरेंद्र, दिनेश कटारा, लालाराम, किशोर प्रसाद, सीताराम, देवीराम, प्रमोद प्रजापत, रतन कुमार, दीपक कुमार, संदीप जैन, अभिषेक जैन, वीरेंद्र कुमार, देवेंद्र जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आना। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है कोटा से। फिल्म का नाम है दोस्तों मैंने भी प्यार किया। गीत के बोल हैं कबूतर जा जा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और एसपी बालसुब्रमण्यम जी ने। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं कोटा से अंकुर सामरिया, विजय कुमार, विक्रम जी, राघेंद्र कुमार, जहिंद कुमार, गिरिराज, रामेश्वर, राहुल कुमार, राधेलाल, अरविंद, संजय कुमार, सियाराम, लालाराम, मेघराज मीणा, संजय जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। सुरपुर से रामलाल, दीनदयाल, दिनेश दयाल, धर्मेंद्र चौहान, वहन कुमार, मेहराज मीणा जी, रामपाल डामर, मता दिन कटारा जी, नरेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, सोनू, बलवीर कुमार और दलपत सिंह जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी कलिंजरा से जुड़ रहे हैं हेमंत टेलर, छाया सोनी जी, जलित जोशी, कमलेश पुनकर, चंद्रपाल कुशवाहा, मीनल सालिनी, अशराज और पिंकेश जी, आकिब जी, निवेदिता, माजिद और धनराज जी, मानसिंह नेनामा जी, महेश चंद्र शर्मा जी, शिवदयाल, समुदयाल, राकेश शर्मा जी, राजेश प्रसाद, सोलेंद्र कुमार, किशनलाल, पूरण कुमार, अखिलेश कुमार जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी श्रोता साथियों, जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। सूरपुर से जुड़ना चाह रहे हैं गंदाल द्यास, लाला राम जी, लक्ष्मण, प्रवीण कुमार, हविशंकर जी, राधेश्याम जी, भूपत कुमार, कल्याण सिंह जी, कल सिंह, दलपत और अजीत कुमार जी, दीपक, अजय कुमार, हेमंत टेलर, नरेश चौहान जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कबूतर जा जा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागपत यूपी से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं जोन टिकिस्टो, रोजी टिकिस्टो, पल टिकिस्टो, विलेज टिकिस्टो। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरानी शाह, अरमानी शाह, नवेदी शाह, अजरा तबुसम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गोरिया चले। इस गीत की फरमाइश करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, शानू मानू, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इसी बीच जुन्नाचारी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी और भी श्रोता साथी जुन्नाचारी हैं छत्तीसगढ़ से। लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी, चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। रायगढ़ बिहार से जुड़ रहे हैं उमाराज, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा, कमल जी उमा। खंडवा से जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कुमारी, सपना ताई, राकेश ताई जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला खटक। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं सुरेश डोमिन और शालिनी डोमिन। लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं डोली और प्रभा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गोरिया चले। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, गीत की बोल है मेरे रंग में रंगने वाली। इस गीत की फरमाइश करता है रुपेश संगे, महेश संगे, प्रजेश संगे, प्रतीजी संगे और संगे परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे बक्सर सर से फातमा नाज, बीबी अंसारी, डब्ल्यू जी अंसारी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही है। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं हरजिंदर सिंह, एंजल भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गिनदीप झंझोरिया, गुड्डू जी झंझोरिया। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं चंद्रदास श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है मेरे रंग में रंगने वाली। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोल है ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। इस गीत की फरमाइश करता है दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिसा नायाब जी। इसे भी जुड़ना चाह रही है वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। इसे भी जुड़ना चाह रही है धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। अम्बाला हरियाणा से जुड़ रही है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका नमद, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, सिमरत और जे विजेंद्र जेजान जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोल हैं ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पुराना तालाब डुमराव से। फिल्म का नाम है साजन, गीत के बोल ही बहुत प्यार करते हैं सनम तुझे। इस गीत की फरमाइश करता है वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी, शबनम बानो जी। बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं राज एडी अंसारी, फातमा नास। चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं सतीश अनेजा और बिमला जी अनेजा। सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपनव जी नामदेव। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। पटेल नगर मालोट से जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, गुड्डू झंझोरिया, गुड्डू जी झंझोरिया। इससे भी जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। इस गीत के अनुरोध करता है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, प्रणय सिद्धि, हीरामन शिंदे, प्रतिभाजी गुड़ाने, महेश राम टेके जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागपत से। फिल्म का नाम है भाग मिलका भाग, गीत की बोल है मेरा यार। इस गीत की फरमाइश करता है मुनीष देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भद्रावती से अब्दुल लोहीवाला, शाहिदा शेख, शाहिल शेख, अब्दुल्ला जी शेख। इसे भी जुड़ना चाह रहे संगमुंगी से बाबा साहेब कणकर, साकरबाई कणकर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणेश्वरी और कणकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है सलार पेलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजनुद्दीन, केसरुद्दीन जी। मराठवाड़ा से जुड़ना चाह रही हैं समीद मशरूम, साइना हसन, आगसानाजिया, आफिया इब्राहिम और सदाम जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरानी इरशाद, अरमानी इरशाद, नजबेद इरशाद, अजरत अबूसम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है मेरा यार। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीर बिछा चुकी है भेड़ से और महाराष्ट्र से। गीत के बोल हैं सुना सुना। इस गीत की फरमाइश करता है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, रामनिवास अग्रवाल, धनजीबी टू, पीपी कुदलेश जी और बिरदू परदेसी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर से, जयश्री मिलेत्री, कविताओं, पुष्पा अग्रवाल, कमल कुतली, मंजूश्री परदेसी और मीरा भूसी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे सनावत से मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद इशाक जी और बब्बू डब्बू जी। इस गीत के अनुरोध करता है आकोट महाराष्ट्र से नितिन पाटिल, नंदिनी पाटिल, सरिता जी पाटिल और बुड्डू जी पाटिल। इस गीत के अनुरोध करता है कोका बलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल और नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि जंगेल, ओशिका जंगेल और आदित्य जी जंगेल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही सुना सुना। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, पागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेषर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेषर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेषर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:00। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेषर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:00। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेषर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेषर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8:00। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका।
1: आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता?
0: और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है।
1: पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए, सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
0: व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है, तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था, उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय।
2: तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं
0: है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए।
3: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहेगी फोटोग्राफी और युवा रचनात्मकता से करियर तक का सफर।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि श्रोता साथियों कहना चाहेंगे आपको कि आज लगभग हर युवा के हाथ में कैमरा है। किसी के पास प्रोफेशनल कैमरा है तो किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। हम अपने आसपास की खूबसूरत चीजों, लोगों, प्रकृति, यात्राओं, त्योहार और खास पलों को तस्वीर में कैद करते हैं कशिश।
0: जी हाँ,
1: लेकिन हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि क्या आपने कभी सोचा है कि तस्वीरें आपकी रचनात्मकता को पहचान, आपकी प्रतिभा को अवसर और आपके शौक को करियर में बदल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: फोटोग्राफी केवल कैमरा उठाकर तस्वीर खींच देना नहीं है, ये देखने का एक अलग नजरिया है। एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए श्रोता साथियों आज के कार्यक्रम में समझते हैं कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में युवा अपनी रचनात्मकता को कैसे निखार सकते हैं और इसे एक बेहतर करियर विकल्प में कैसे बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इसी विषय को लेकर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं फोटोग्राफी और युवा को लेकर, यानी कि रचनात्मकता से करियर तक के सफर को लेकर।
1: जी हाँ,
0: अगर यहाँ पर जाने जागृति जी की फोटोग्राफी होती क्या है, तो साथियों फोटोग्राफी का सामान्य मतलब होता है किसी दृश्य, व्यक्ति, वस्तु या पल को कैमरे की मदद से तस्वीर के रूप में सुरक्षित करना। लेकिन इसके पीछे केवल तकनीक नहीं बल्कि कल्पना, संवेदनशीलता और नजरिया भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एक ही जगह पर खड़े 10 लोग एक ही दृश्य की तस्वीर ले सकते हैं, फिर भी संभव है कि सभी तस्वीरें अलग अलग दिखाई देंगी। ऐसा इसलिए जागृति जी, क्योंकि हर व्यक्ति उस दृश्य को अपने नजरिए से देखता है और यही फोटोग्राफी की एक खूबसूरती होती है। साथियों,
1: बिल्कुल
0: आपको बताना चाहेंगे कि फोटोग्राफर केवल ये नहीं देखता कि सामने क्या है, बल्कि वह यह भी सोचता है कि इस दृश्य की कहानी क्या है और इसे तस्वीर के माध्यम से कैसे बताया जा सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज का युवा रचनात्मक है, वो नई चीजें सीखना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है और अपनी पहचान बनाना चाहता है।
0: जी,
1: हम देखते हैं कि फोटोग्राफी युवाओं को इन सभी चीजों के लिए एक मंच दे सकती है। फोटोग्राफी के माध्यम से हमारे युवा अपनी कल्पना शक्ति, अवलोकन क्षमता और कलात्मक सोच को विकसित भी कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: मान लीजिए श्रोता साथियों कि कोई युवा अपने गांव की खेती, स्थानीय संस्कृति, लोक कलाकारों और हस्तशिल्प, मेले या प्राकृतिक सुंदरता की तस्वीरें खींचता है। धीरे धीरे उसकी तस्वीरें उसके क्षेत्र की कहानी लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कशिश की फोटोग्राफी केवल व्यक्तिगत शौक नहीं रहती बल्कि समाज और समुदाय को दिखाने और समझने का माध्यम भी बन जाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अगर बात करें कि फोटोग्राफी में सबसे जरूरी है रचनात्मकता को लेकर, तो दोस्तों किसी महंगे कैमरे का होना आपको अपने आप अच्छा फोटोग्राफर नहीं बना देता। सबसे पहले जरूरी है कि हमारा नजरिया रचनात्मक होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि एक रचनात्मक फोटोग्राफर सामान्य से चीज में भी खासियत खोज लेता है जागृति जी। वह रोशनी, छाया, भावनाओं, रंग, वातावरण और समय को समझने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए देखिए साथियों, तो बारिश की कुछ बूंदे किसी के लिए सिर्फ पानी हो सकती है, लेकिन एक जो रचनात्मक फोटोग्राफर होता है वो उन्हीं बूंदों में प्रकृति की सुंदरता देख सकता है।
1: जी हाँ,
0: सुबह खेत में काम करता किसान, स्कूल जाता बच्चा, बाजार की चहल पहल, किसी बुजुर्ग के चेहरे के भाव या किसी कलाकार का अपने काम में डूबा होना। साथियों, ये सभी तस्वीरों के माध्यम से कहानियां बन सकती है, इसलिए युवा साथियों को चाहिए कि वे केवल तस्वीर खींचने के बजाय देखना सीखें।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कई युवा सोचते हैं कि फोटोग्राफी शुरू करने के लिए महंगा कैमरा खरीदना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आज के स्मार्टफोन में भी काफी अच्छे कैमरे होते हैं। हम देखते हैं कि शुरुआत के लिए हमारा फोन ही हमारे लिए पर्याप्त हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने फोन से अलग अलग चीजों की तस्वीरें खींच सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग रोशनी में फोटो लेकर हमें देखना होगा, दिन और रात के अंतर को समझना होगा, साथ ही एक ही वस्तु के अलग अलग एंगल से तस्वीर खींचनी होगी, प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करना होगा, तस्वीर में अनावश्यक चीजों को कम करने की कोशिश करनी होगी।
0: बिल्कुल,
1: लोगों की तस्वीर लेते समय उनकी अनुमति और सम्मान को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहा गया है कशिश की शुरुआत में तस्वीर परफेक्ट नहीं होंगी और इसकी चिंता करने की भी हमें जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सीखने का सबसे अच्छा तरीका लगातार अभ्यास करना है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम हमारे युवा साथियों से बात कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से फोटोग्राफी में हमारे युवा साथी अपना करियर बना सकते हैं और फोटोग्राफी का सबसे अच्छा माध्यम रचनात्मकता कैसे होता है, ये भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जान रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें आगे भी ऐसे ही बनी रहेंगी हमारी, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ में, आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: साथी इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी फोटोग्राफी के क्षेत्र में, हमारे युवा साथी अपनी रचनात्मकता को कैसे निखार सकते हैं
1: जी जी,
0: और इसे एक बेहतर करियर विकल्प में कैसे बदल सकते हैं। तो जैसा कि हमने गीत से पहले बहुत सारी बातें की थी, यही हम जानते हैं कशिश कि फोटोग्राफी में तकनीक सीखना भी क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, रचनात्मकता के साथ साथ फोटोग्राफी की तकनीकी जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। युवाओं को धीरे धीरे कैमरे की मूल बातें सीखनी होगी, जैसे फोकस, एक्सपोजर, शटर स्पीड, अपचर, ISO, कंपोजिशन और लाइटिंग। इन शब्दों को सुनकर शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है श्रोता साथियों, लेकिन अभ्यास के साथ ये बातें आसानी से समझ आने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि फोटो एडिटिंग का बेसिक ज्ञान भी उपयोगी है। फोटो को सही तरीके से क्रॉप करना, रोशनी और कंट्रास्ट को संतुलित करना, तस्वीर को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना सीखा जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन एक बात आप जरूर याद रखिए कि एडिटिंग का उद्देश्य तस्वीर को बेहतर बनाना होना चाहिए, वास्तविकता को गलत तरीके से प्रस्तुत करना नहीं।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। साथी जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमारे श्रोता साथियों को हमने बताया था और अभी भी आपने बताया था कि हमारे युवा साथी इसमें अपना करियर बना सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: अगर जाने यहाँ पर कि करियर के विकल्प क्या हो सकते हैं, तो फोटोग्राफी सीखने के बाद युवाओं के सामने कई रास्ते होते हैं, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी। साथियों शादी और पारिवारिक कार्यक्रमों में फोटोग्राफरों की आवश्यकता होती है।

0: ये केवल तस्वीर खींचना ही नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं और खास पलों को कैद करना भी महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल,
0: जिन युवाओं को प्रकृति और वन्य जीवों में रुचि है वे इस क्षेत्र को सीख सकते हैं। इसमें श्रोता साथियों धैर्य और प्रकृति के बीच सम्मान बहुत जरूरी होता है, यानी कि श्रोता साथियों आप नेचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी सीख सकते हैं। साथ ही अगर बात करें फोटो जर्नलिज्म की तो समाचार और सामाजिक घटनाओं को तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तुत करना भी फोटोग्राफी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है।
1: जी हाँ,
0: यहाँ जागृति जी फोटोग्राफर को घटनाओं को समझने और जिम्मेदारी से तस्वीर प्रस्तुत करने की जरूरत होती है।
1: और हम कह सकते हैं कशिश कि ऑनलाइन व्यवसाय और दुकानदारों को अपने उत्पादों की अच्छी तस्वीरों की आवश्यकता होती है। कपड़े, हस्तशिल्प, भोजन, आभूषण और दूसरे उत्पादों के लिए प्रोटेक्टिव फोटोग्राफी की जरूरत भी पड़ती है।
0: जी जी,
1: यात्रा और पर्यटन से जुड़े स्थानों, संस्कृति, भोजन और स्थानीय जीवन को तस्वीर के माध्यम से भी प्रस्तुत करना भी एक क्षेत्र है। साथ ही मॉडल, कलाकार, प्रोफेशनल प्रोफाइल और व्यक्तिगत पोर्ट्रेट के लिए भी फोटोग्राफी की जरूरत होती है।
0: जी हाँ,
1: आज छोटे व्यवसायों, संस्थाओं और क्रिएटर्स को सोशल मीडिया के लिए लगातार अच्छे विजुअल कंटेंट की जरूरत होती है कशिश, और यहाँ फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियो और बेसिक एडिटिंग का ज्ञान भी काफी उपयोगी हो सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में अगर हमारे किसी युवा साथी को लगता है कि उसे फोटोग्राफी पसंद है तो वे एक व्यवस्थित तरीके से शुरुआत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, आपका पहला कदम तो यह होगा कि आप फोटोग्राफी सीखेंगे, यानी कि फोटोग्राफी के बेसिक नियमों को आप समझेंगे, फिर रोज कुछ नया शूट करने की आप कोशिश करेंगे। श्रोता साथियों, आपको लोगों की तस्वीरें पसंद है, प्रकृति की, संस्कृति की या उत्पादों की, इसे आप समझें। पोर्टफोलियो बनाइए, यानी कि अपनी सबसे अच्छी तस्वीरों को व्यवस्थित करके एक पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकते हैं। अनुभवी लोगों से अपनी तस्वीरों पर सुझाव मांगिए, आलोचना से घबराइए नहीं श्रोता साथियों। साथ ही नेटवर्क बनाने की कोशिश करें, यानी कि स्थानीय कार्यक्रमों, कलाकारों, व्यवसायों और दूसरे क्रिएटिव लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं। फोटोग्राफी में तकनीक और ट्रेंड लगातार बदलते रहते हैं जागृति जी, इसलिए हमारे युवा साथियों को कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारे युवाओं के मन में अक्सर एक सवाल आता है कशिश कि क्या अच्छा कैमरा खरीदने के बाद ही मैं अच्छा फोटोग्राफर बन सकता हूँ?
0: जी हाँ
1: साथियों, इसका जवाब है नहीं। महंगा कैमरा हमारे पास बेहतर तकनीकी विकल्प ला सकता है, लेकिन अच्छी तस्वीरों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज है फोटोग्राफर की सोच।
0: बिल्कुल,
1: अगर हमारी नजर में कहानी नहीं है तो महंगा कैमरा भी तस्वीर को खास नहीं बना सकता।
0: जी हाँ,
1: इसलिए शुरुआत में उपकरणों के पीछे भागने के बजाय अपने स्किल्स और क्रिएटिविटी पर निवेश कीजिए। पहले सीखिए, अभ्यास कीजिए, जब जरूरत महसूस हो तब धीरे धीरे बेहतर उपकरणों की ओर जरूर बढ़िए।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही युवा साथियों स्थानीय स्तर पर भी आपको बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। जैसे कि फोटोग्राफी में अवसर खोजने के लिए हमेशा बड़े शहर की ओर जाने की जरूरत नहीं होती, हमारे अपने गांव, कस्बे और शहर में भी बहुत कुछ ऐसा है साथियों जिसे तस्वीरों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे कि स्थानीय मेले हो गए, पारंपरिक कला, लोक संगीत, खेती, ग्रामीण जीवन, हस्तशिल्प, छोटे व्यवसाय और सामुदायिक गतिविधियां। जागृति जी, इन सबकी अच्छी तस्वीरें बनाई जा सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक युवा अपने क्षेत्र की दृश्य कहानी तैयार कर सकते हैं, इससे न केवल उनकी फोटोग्राफी बेहतर होगी बल्कि वे अपने क्षेत्र की संस्कृति और पहचान को भी सामने लाने में योगदान दे सकते हैं।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि फोटोग्राफी में रचनात्मकता जितनी जरूरी होती है उतनी ही जरूरी है जिम्मेदारी। साथियों, किसी व्यक्ति की तस्वीर लेने से पहले उसकी अनुमति लेना अच्छी आदत है, विशेषकर तब जब तस्वीर को सार्वजनिक रूप से साझा किया जाना हो। बच्चों हो, निजी परिस्थितियां या संवेदनशील घटनाओं की तस्वीरों को साझा करते समय अतिरिक्त सावधानी बहुत जरूरी है। किसी की गरीबी, परेशानी या निजी स्थिति को केवल कंटेंट समझकर प्रस्तुत नहीं करना होगा। एक जिम्मेदार फोटोग्राफर की कोशिश होनी चाहिए कि उसकी तस्वीर किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचाए।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए श्रोताओं, कैमरा केवल तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं करता, वो हमारी सोच और समाज के प्रति हमारे नजरिए को भी सामने लाता है।
0: जी हाँ, ऐसे में युवा साथियों, अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने की इच्छा है और आपको तस्वीरों के माध्यम से कहानियां बताना अच्छा लगता है तो फोटोग्राफी को केवल शौक मानकर आप छोड़ मत दीजिए। इससे सीखिए, अभ्यास कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए साथियों, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और लोगों से जुड़िए, और सबसे जरूरी बात, अपनी रचनात्मकता पर भरोसा रखिए। हो सकता है जागृति जी कि आज हमारे युवा साथी अपने मोबाइल से एक सामान्य सी तस्वीर खींच रहे हों, लेकिन लगातार सीखते सीखते वही तस्वीरें कल उनके काम का हिस्सा बन जाए। साथियों, करियर हमेशा एक दिन में तैयार नहीं होता, वो छोटे छोटे प्रयासों, सीखने और लगातार अभ्यास करने से बनता है।
1: बिल्कुल, तो साथियों आज की हमारी बातचीत से यही समझ आता है कि फोटोग्राफी केवल तस्वीरें खींचने का हुनर नहीं है, बल्कि दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की कला भी है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे पास कैमरा हो, स्मार्टफोन हो, शुरुआत आज से ही की जा सकती है। अपने आसपास देखिए, किसी खूबसूरत दृश्य को महसूस कीजिए, किसी कहानी को पहचानिए और उसे तस्वीर के माध्यम से कहने की कोशिश जरूर कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हो सकता है कशिश की हमारी खींची हुई एक तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर ना हो बल्कि हमारी रचनात्मक पहचान और हमारे भविष्य के करियर की पहली सीढ़ी हो।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए युवा साथियों, शौक तब हुनर बनता है जब उसमें सीखने की लगन जुड़ती है और हुनर तब करियर बनता है जब उसके साथ निरंतर मेहनत और सही दिशा जुड़ती है।
0: जी हाँ।
1: इसी सकारात्मक सोच के साथ आज किस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, कभी अलमारी खोलते हुए अचानक कोई पुरानी तस्वीर हाथ लग जाती है। तस्वीर में चेहरा हमारा होता है लेकिन आंखों के सामने पूरा बचपन घूम जाता है। वह पुराना घर, आंगन में खेलना, दोस्तों के साथ शरारते, स्कूल की पहली ड्रेस, त्योहार की रौनक और परिवार के साथ बिताए पल, जिन्हें समय तो पीछे छोड़ आया कशिश, लेकिन यादें आज भी हमारे साथ हैं।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही तस्वीरों में कैद बचपन की यादों की। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुरानी तस्वीरें सिर्फ हमारा पुराना समय हमें याद दिलाती है या उनसे हमें अपने जीवन और रिश्तों के बारे में कुछ सीख भी मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम इस विषय पर बात करेंगे। बचपन की तस्वीरों को बच्चों के साथ साझा करके कैसे उन्हें परिवार, रिश्तों, परंपराओं और अपने बीते समय से जोड़ा जा सकता है। बातें ढेर सारी रहेंगी लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय हमारे बीच बातचीत का जुड़ चुका है और गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमने आपसे की थी कि आज हम बात कर रहे हैं तस्वीरों में कैद बचपन, यादें भी और सीख भी को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: कहते ना अंजलि जी की बचपन जिंदगी का वह खूबसूरत हिस्सा है जिसे हम पीछे तो छोड़ आते हैं लेकिन अपने दिल से कभी दूर नहीं कर पाते। श्रोता साथियों, बचपन की शरारतें, मिट्टी में खेलना, दोस्तों के साथ हंसना, दादी नानी की कहानियां सुनना, स्कूल की पहली किताब, पहली साइकिल, परिवार के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, ये सभी हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन अंजलि जी, आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने बचपन को एक अलग नजरिए से देखेंगे, यानी कि तस्वीरों के माध्यम से। जैसे कि एक पुरानी तस्वीर जब हमारे सामने आती है तो वह सिर्फ कागज पर छपी तस्वीर नहीं होती, उसमें हमारी एक पूरी कहानी छिपी हुई होती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, तस्वीर देखकर हमें याद आता है कि उस दिन कौन हमारे साथ था, हमने क्या पहना था, कहाँ गए थे, किस बात पर हंसे थे और उस समय हमारे जीवन में क्या खास था।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, आज मोबाइल फोन और कैमरे ने तस्वीर लेना बहुत आसान बना दिया। पहले किसी खास अवसर पर ही फोटो खिंचवाने का मौका मिलता था, परिवार के सभी लोग एक जगह बैठते, अच्छे कपड़े पहनते और फिर तस्वीर खींचते थे।
0: जी जी।
1: आज हमारे मोबाइल में सैकड़ों हजारों तस्वीरें होती हैं, लेकिन पुराने समय की एक तस्वीर को देखने का आनंद कुछ और होता है।
0: बिल्कुल।
1: कभी घर की पुरानी संदूक या अलमारी में रखी तस्वीरों को निकाल कर देखिए, किसी तस्वीर में पिता अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए दिखाई देंगे तो किसी में माँ बच्चे के स्कूल जाने के पहले उसका माथा चूम रही होगी।
0: बिल्कुल।
1: कहीं पूरा परिवार त्योहार के दिन साथ खड़ा होगा तो कहीं बच्चे गांव की गलियों में खेलते दिखाई देंगे। हर तस्वीर कशिश अपने आप में कहानी कहती है, तस्वीर हमें हमारे बीते समय से जोड़ती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं साथियों कि बचपन की तस्वीर हमारी पहचान है, यानी कि बचपन की तस्वीरें हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं। आज हम बड़े हो गए हैं साथियों, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, हमारा पहनावा, बोलने का तरीका और जीवन शैली भी बदल चुकी है, लेकिन हमारी पुरानी तस्वीर हमें हमारे उसी सरल और मासूम रूप से मिलाती है। अंजलि जी,
1: जी जी।
0: एक बच्चा जब अपने बचपन की तस्वीर को देखता है तो वो अपने माता पिता से सवाल पूछता है कि मैं इतना छोटा था क्या, मैं ये कपड़े पहनता था क्या, ये मेरे साथ कौन खड़ा है मम्मी पापा, मैं इस जगह कब गया था, मेरे बचपन का घर कैसा था, उस समय गांव में क्या क्या होता था। हम देखते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब देते हुए माता पिता बच्चों को सिर्फ एक तस्वीर की कहानी नहीं बताते।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि परिवार का इतिहास और अपनी जड़ों से जुड़ी बातें भी बताते हैं।
1: जी हाँ कशिश, अगर घर में दादा दादी, नाना नानी या परिवार के बुजुर्गों की पुरानी तस्वीर है तो उन्हें बच्चों के साथ जरूर देखिए। एक पुरानी तस्वीर के पीछे कई पीढ़ियों की कहानी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: बुजुर्ग बच्चों को बता सकते हैं कि उनके समय में गांव का जीवन कैसा था, लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते थे, त्योहार किस तरह मनाए जाते थे, बच्चे किन खेलों में हिस्सा लेते थे, स्कूल तक कैसे जाते थे, खेती पशुपालन का जीवन कैसा था,
0: जी जी।
1: साथ ही परिवार के लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहते थे। इस तरह तस्वीरें पीढ़ियों के बीच संवाद का माध्यम बन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: कशिश, आज कई बच्चे अपने परिवार के पुराने अनुभवों से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में पुरानी तस्वीरें बच्चों को अपने जीवन और अपनी संस्कृति को समझने का एक आसान रास्ता देती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है तस्वीरों में कैद बचपन को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: और ये किस प्रकार से हमारे बच्चों के लिए यादें भी हैं और सीख भी, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें तस्वीरों से मिलने वाली पहली सीख, यानी समय कभी वापस नहीं आता।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, बचपन की तस्वीर हमें सबसे बड़ी सीख यही देती है कि समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। जिस दिन की तस्वीर हमें कल की बात लगती है, वो वास्तव में कई साल पुरानी हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: बचपन की तस्वीर देखकर हमें एहसास होता है कि जिंदगी कितनी तेजी से बदलती है। इसलिए आज जो समय हमारे पास है श्रोता साथियों, उसे केवल मोबाइल स्क्रीन पर बिताने के बजाय परिवार, दोस्तों और प्रकृति के साथ भी बिताना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आता, इसलिए बच्चों के साथ समय बिताइए, उनकी बातें सुनना, उनके साथ खेलना, उनके छोटे छोटे अनुभवों को महत्व देना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ
0: कशिश, कई बार पुरानी तस्वीरों में पूरा परिवार एक साथ दिखाई देता है। आज परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई नौकरी में व्यस्त है, तो कोई पढ़ाई में, तो कोई घर के कामों में। ऐसे में तस्वीरें हमें याद दिलाती है कि परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे मूल्यवान होता है। बच्चों को केवल महंगे खिलौने या चीजें देना ही जरूरी नहीं, उन्हें माता पिता का समय चाहिए, बातचीत चाहिए, प्यार चाहिए और परिवार का साथ चाहिए, क्योंकि एक साधारण सी तस्वीर कई साल बाद बच्चे के लिए सबसे कीमती याद बन सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने गाँव की किसी पुरानी तस्वीर को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा।
0: बिल्कुल,
1: कहीं खेतों का दृश्य होगा, कहीं पेड़ के नीचे बैठे लोग आपको दिखाई देंगे, कहीं मिट्टी का घर होगा तो कहीं कुआं या तालाब होगा, और कहीं तो अंजलि जी बैलगाड़ियां भी हमें दिखाई देती है। आज इनमें से कई चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। ऐसी तस्वीरें श्रोता साथियों बच्चों से यह सवाल पूछने का अवसर देती है कि हमारे गांव में पहले क्या था और आज क्या बदल गया है।
0: जी जी,
1: इस सवाल से अंजलि जी बच्चे अपने गांव के इतिहास, प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय जीवन के बारे में सीख सकते हैं। साथ ही उन्हें ये भी समझाया जा सकता है कि पेड़, तालाब, कुएं, पशुधन केवल पुरानी तस्वीरों की चीजें नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
0: बिल्कुल कशिश, किसी बच्चे की पहली स्कूल ड्रेस की तस्वीर हो, स्कूल के कार्यक्रम की तस्वीर हो, या दोस्तों के साथ खिंचवाई गई फोटो, इनमें शिक्षा से जुड़ी कई यादें होती हैं। बच्चे जब अपनी पुरानी स्कूल की तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें अपने शिक्षक, सहपाठी और स्कूल की गतिविधियां याद आती हैं।
1: जी जी,
0: माता पिता भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि तुम्हें स्कूल की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती थी। इस तरह तस्वीर के माध्यम से बच्चों को अपनी शिक्षा की यात्रा को याद करने, अपनी उपलब्धियों को पहचानने का मौका मिलता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, सप्ताह में एक दिन परिवार के लोग मिलकर यादों का समय रख सकते हैं। इसमें परिवार का कोई सदस्य एक पुरानी तस्वीर चुने और सभी लोग उस तस्वीर के बारे में बातचीत करें। उदाहरण के लिए बच्चा, माँ इस फोटो में मैं क्या कर रहा हूँ? माँ कहे, तुम्हें याद नहीं उस दिन तुम्हारा स्कूल का कार्यक्रम था? और बच्चा कहे, और ये कौन है? दादी कहे कि ये तुम्हारे नाना के पुराने मित्र हैं, उस समय सब गांव के मेले में गए थे। इस तरह बातचीत आगे बढ़ती जाएगी और एक तस्वीर पूरे परिवार को अपनी पुरानी यादों से जोड़ देगी।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज लगभग हर परिवार के पास मोबाइल है, इसलिए बच्चों को तस्वीरों का सही उपयोग सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चे दिन भर हर छोटी चीज की फोटो खींचने के बजाय ऐसी तस्वीरें लें जिनमें कोई कहानी, अनुभव या सीख हो श्रोता साथियों, जैसे कि पौधा लगाने की तस्वीर, दादा दादी के साथ बिताया गया समय, परिवार के साथ त्योहार की तस्वीर, स्कूल की उपलब्धि, किसी पारंपरिक कला या काम की तस्वीर, गाँव की प्राकृतिक सुंदरता का दृश्य। श्रोता साथियों, ऐसे में बच्चों को ये समझना जरूरी है कि हर तस्वीर सोशल मीडिया पर डालना जरूरी नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: निजी तस्वीरों और परिवार की जानकारी को सुरक्षित रखना भी एक जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल कशिश,
1: हम कह सकते हैं साथियों कि मेरी बचपन की तस्वीर और मेरी कहानी जैसी गतिविधियां भी बच्चों को करनी चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम बच्चों के लिए एक छोटी सी गतिविधि शुरू करें श्रोता साथियों, जिसमें बच्चे अपने घर की कोई पुरानी तस्वीर चुनेंगे और उसके बारे में 5 बातें लिखेंगे, जैसे कि तस्वीर कब की है, तस्वीर में कौन कौन है, ये तस्वीर कहाँ से ली गई है और उस दिन का क्या खास हुआ था, इसी के साथ ही इस तस्वीर से उन्हें क्या सीख मिलती है। हम देखेंगे कि फिर बच्चा अपने परिवार के किसी बुजुर्ग से उस तस्वीर की कहानी पूछेगा। इस गतिविधि से अंजलि जी बच्चे बातचीत करना, सुनना, लिखना और परिवार के इतिहास को समझना सीखेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि तस्वीरें हमारे जीवन के बीते हुए पलों को रोककर रखने का एक सुंदर माध्यम है, लेकिन तस्वीरों की असली खूबसूरती उनके रंगों या चेहरे में नहीं बल्कि उनसे जुड़ी भावना और कहानियों में होती है। बचपन की तस्वीर हमें हमारी मासूमियत याद दिलाती है, परिवार की तस्वीर हमें रिश्तों का महत्व समझाती है, गांव की पुरानी तस्वीर हमें अपनी मिट्टी और परंपराओं से जोड़ती है, बुजुर्गों की तस्वीर हमें पिछली पीढ़ियों के अनुभव तक ले जाती है और स्कूल की तस्वीर हमें अपने सीखों की यात्रा याद दिलाती है। इसलिए अगली बार जब आपको घर में कोई पुरानी तस्वीर मिले तो उसे केवल देखकर आगे मत बढ़ जाइए, उसे ध्यान से देखिए, उसके बारे में अपने माता पिता बुजुर्गों से पूछिए और उस कहानी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाइए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यादें तभी जीवित रहती हैं जब उन्हें सिर्फ संभाल कर नहीं बल्कि साझा करके आगे बढ़ा जाता है। और बच्चों के लिए ये समझना भी जरूरी है कि उनका आज का हर छोटा सा अनुभव कल की खूबसूरत याद बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बचपन को केवल तस्वीरों में कैद रखने के बजाय उसे खेल, प्रकृति, परिवार, दोस्ती, सीख और मुस्कान से भरपूर बनाइए। तो श्रोता साथियों, आज ही आप अपने घर की कोई पुरानी तस्वीर खोजिए, उसे परिवार के साथ बैठकर देखिए, उसकी कहानी सुनिए और उस कहानी से मिलने वाले सीख को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाइए। क्योंकि याद रखिए, तस्वीरें बीते कल को दिखाती हैं और यादें हमें अपनेपन से जोड़ती हैं और उनसे मिलने वाले सीख हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हुई और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन और हमारी बातें अब यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।

0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खावानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
0: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज तकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुन ने आपनी पुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हम रेडियो हो आपू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते मैं आप सबनु घणे मान स्वागत करा हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे जहाँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बुनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि आपणे बारिश ना मौसम में जो पोषण वाड़ी है इनु ध्यान हरते राखो ने कई कई एवी जैविक चीजें हैं जिन्हों आपणे प्रयोग करवानी जरूरत है। तो भाई बुनो अणा विषय माते हमारी अब तक की घना कनी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू कर इन पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी बातें। तो आप हम वरते रहो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

छत्ता जो आंगणा में जाजो ने सब्जिया उगाओ। ये मारा पानी नो करी दो उपयोग के वात मारी होण जोरे। तमे पानी नो करो उपयोग वात मारी होण जोरे। घरनो बीज वापरो तो ताजी सब्जी मलेगा। घरनो सीज वापरो तो ताजी सब्जी मलेगा। हे आनी वातानो हे आनी वात।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है मानवता सबसे बड़ा धर्म क्यों है को लेकर। जैसे कि श्रोता साथियों, धर्म हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है, लेकिन मानवता हमें इंसान से इंसान तक पहुंचने का रास्ता सिखाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे मानवता सबसे बड़ा धर्म क्यों है, लेकिन शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: वाले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं मानवता सबसे बड़ा धर्म क्यों है, तो अंजलि मनुष्य को प्रकृति ने बहुत सारी विशेषताएं दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, संवेदनाएं दी है, दूसरों के दुख सुख को समझने की क्षमता भी दी है, और यही संवेदनशीलता मनुष्य को वास्तव में इंसान बनाती है। हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे धर्म, जाति, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं, लेकिन इन सभी विविधताओं के बीच एक मूल्य ऐसा है जो हर व्यक्ति को जोड़ता है और वो है मानवता। इसलिए श्रोता साथियों, कहा जाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।
1: बिल्कुल जागृति जी, विश्व मानवता दिवस हमें इसी विचार की याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: किसी जरूरतमंद की सहायता करना, दुखी व्यक्ति को सहारा देना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी कमजोर के अधिकार की रक्षा करना और बिना किसी भेदभाव के सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, ये सभी मानवता के रूप है। मानवता का अर्थ केवल किसी की मदद कर देना नहीं, मानवता एक ऐसी भावना है जागृति जी, जिसमें दया, करुणा, प्रेम, सम्मान, सहानुभूति, सहयोग और समानता शामिल है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के दर्द को अपना दर्द समझते हैं और उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब मानवता जीवित होती है। मानवता हमें सिखाती है श्रोता साथियों कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति से नहीं जागृति जी, बल्कि उसके इंसान होने से है। दुनिया में हमारी पहचान अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी मूल आवश्यकताएं और भावनाएं समान है। हर व्यक्ति सम्मान, सुरक्षा, प्रेम और अवसर का अधिकारी है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे धर्मों ने प्रेम, सत्य, करुणा और सेवा का संदेश दिया है। अलग अलग धार्मिक परंपराओं के मार्ग भले अलग हों, लेकिन श्रोताओं, उनका मूल उद्देश्य मनुष्य को बेहतर बनाना है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक होने का दावा करे लेकिन उसके व्यवहार में दया नहीं है, प्रेम नहीं है और सम्मान नहीं है, तो उसकी धार्मिकता अधूरी है।
1: बिल्कुल,
0: मानवता हमें किसी विशेष पूजा पद्धति का पालन करने के लिए नहीं कहती है, ये केवल इतना कहती है कि दूसरे मनुष्य के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो। इसलिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि ये किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की साझा पहचान है।
1: जी हाँ जागृति जी, मानवता का सबसे सुंदर रूप है सेवा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तब हम समाज को मजबूत बनाते हैं। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना, बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना, जरूरतमंद व्यक्ति तक भोजन पहुँचाना, किसी बीमार व्यक्ति के लिए सहायता जुटाना या किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना, ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सेवा के लिए श्रोता साथियों, हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। कई बार हमारा समय, हमारी मेहनत, हमारे अच्छे शब्द, हमारी संवेदनशीलता ही किसी के लिए सबसे बड़ी सहायता बन जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, अगर संकट के समय मानवता की परीक्षा को लेकर हम बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में अच्छे व्यवहार की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन श्रोताओं, वास्तविक मानवता की परीक्षा संकट के समय होती है, जब किसी व्यक्ति पर कठिनाई आती है और दूसरे लोग बिना स्वार्थ उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तब समाज की असली शक्ति दिखाई देती है। अंजलि, प्राकृतिक आपदा हो, बीमारी हो, दुर्घटना हो या किसी अन्य संकट के समय जब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब ये सिद्ध होता है कि इंसानियत की भावना किसी भी सीमा से बड़ी है।
1: बिल्कुल,
0: संकट हमें ये सिखाता है श्रोताओं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं है। आज किसी और को हमारी जरूरत हो सकती है और कल हमें किसी और के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि मानवता जो है वो भेदभाव से ऊपर उठना है। मानवता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है भेदभाव को समाप्त करना। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति या क्षेत्र के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा समझना मानवता के विरुद्ध है। हर व्यक्ति की गरिमा समान है, किसी के पास अधिक साधन है और किसी के पास कम, लेकिन इससे किसी के मानवीय मूल्य में अंतर नहीं आता। एक सच्चा मानवीय समाज वही है जहां व्यक्ति को उसके कर्म, चरित्र और व्यवहार से सम्मान मिलता है, न कि उसकी सामाजिक पहचान से।
0: बिल्कुल अंजलि, आज विज्ञान और तकनीक ने दुनिया को बहुत करीब ला दिया है। हम कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी हिस्से के व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमें मानवीय संवेदनाओं को भी मजबूत करना होगा। कई बार हम देखते हैं कि हम सोशल मीडिया पर किसी दुखद घटना पर प्रतिक्रिया तो दे देते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अपने आसपास मौजूद जरूरतमंद व्यक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। मानवता हमें केवल भावनाएं व्यक्त करना नहीं सिखाती बल्कि जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाना भी सिखाती है।
1: जी जी,
0: आज हमें ऐसे समाज की आवश्यकता है जहाँ तकनीक के साथ संवेदना भी बढ़े, शिक्षा के साथ संस्कार भी बढ़े और विकास के साथ समानता भी बढ़े।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातें जान रहे हैं, मानवता सबसे बड़ा धर्म क्यों है उसको लेकर। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ, नजर

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि मानवता का वास्तविक अर्थ क्या है, मानवता सबसे बड़ा धर्म क्यों है, इसी के साथ हम जान पाए कि सेवा में छिपी है सच्ची मानवता, संकट के समय मानवता की परीक्षा किस तरीके से होती है, भेदभाव से उठना और आज के समय में मानवता की आवश्यकता क्यों अधिक है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है युवाओं की भूमिका की। श्रोता साथियों, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उनमें ऊर्जा, नई सोच, परिवर्तन की क्षमता होती है। यदि युवा जागृति जी मानवता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो समाज में सकारात्मक बदलाव तेजी से आ सकता है। युवा रक्तदान जैसे सेवा कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण में भाग ले सकते हैं, बुजुर्गों की सहायता कर सकते हैं और समाज में फैली नफरत भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा को सोशल मीडिया पर केवल संदेश साझा करने के बजाय वास्तविक जीवन में मानवता का उदाहरण बनना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है, अगर हम बच्चों की भूमिकाओं के लेकर बात करें तो मानवता की नींव बचपन में रखी जाती है। बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान देना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें दूसरों का सम्मान करना, अपनी वस्तुएं साझा करना, कमजोर की सहायता करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और प्रकृति की रक्षा करना भी सिखाना होगा। जब कोई बच्चा अपने मित्र की मदद करता है, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में सहयोग करता है या किसी जरूरतमंद के साथ अपनी चीज साझा करता है, तब वो मानवता का वास्तविक पाठ सीख रहा होता है। परिवार और विद्यालय मिलकर बच्चों में ऐसे संस्कार विकसित कर सकते हैं जो आगे चलकर एक संवेदनशील और जिम्मेदार समाज का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, मानवता केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील होना भी हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, जल स्रोतों की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। यदि श्रोता साथियों, हम अपने विकास के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक दोहन करते हैं तो उसका प्रभाव मनुष्य पर ही पड़ता है, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना भी मानवता की सेवा है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, मानवता के लिए हमेशा बड़े काम करना जरूरी नहीं होता। किसी उदास व्यक्ति से प्रेम से बात करना, किसी अकेले व्यक्ति की बात सुनना, रास्ते में पड़े कचरे को उठाकर उचित स्थान पर डालना, किसी जरूरतमंद को सही जानकारी देना या किसी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करना भी मानवता है। कभी कभी हमारे कुछ शब्द किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, हमारी छोटी सी सहायता किसी परिवार की मुश्किलें आसान कर सकती है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चा धर्म तो वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनाता है। पूजा, प्रार्थना और धार्मिक आस्थाएं व्यक्तिगत विश्वास का विषय है, लेकिन दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार हमारे चरित्र को दर्शाता है। अगर हमारे भीतर करुणा है तो हम किसी को अनावश्यक पीड़ा नहीं देंगे। अगर हमारे भीतर प्रेम है तो हम नफरत फैलाने से बचेंगे। अगर हमारे भीतर मानवता है तो हम जरूरतमंद को देखकर उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मानवता किसी धर्म का विरोध नहीं करती, बल्कि हर धर्म के अच्छे मूल्यों को व्यवहार में उतारने का रास्ता दिखाती है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि विश्व मानवता दिवस हमें याद दिलाता है कि दुनिया को केवल बड़े बड़े भाषणों की नहीं, बल्कि छोटे छोटे मानवीय कार्यों की जरूरत है। दुनिया में शांति तभी संभव है जब लोगों के बीच सम्मान होगा, सहयोग होगा और संवेदना बढ़ेगी। अगर अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम कहें कि हम किसी के साथ उसकी पहचान के कारण भेदभाव नहीं करेंगे, जरूरतमंद व्यक्ति की क्षमता के अनुसार सहायता करेंगे, समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अपने व्यवहार से दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे, तो मानवता को एक दिन मनाने का विषय नहीं है, ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज दुनिया को हथियारों से अधिक मानवीय संवेदनाओं की जरूरत है। विकास की उच्च इमारतें तभी सार्थक है जब उनके भीतर रहने वाले लोगों के दिलों में करुणा और सम्मान हो। शिक्षा तभी सफल है श्रोता साथियों जब वह हमें केवल सफल व्यक्ति नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी बनाए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा धर्म, भाषा, संस्कृति और पहचान अलग हो सकती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी सांझा पहचान है कि हम इंसान हैं। असली मानवता को केवल एक विचार न बनाकर अपने व्यवहार में उतारना होगा। किसी की मदद करते समय उसका परिचय पूछने से पहले उसकी जरूरत समझनी होगी। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी परिस्थिति पर निर्णय लेने के बजाय उसके साथ खड़ा होना होगा। मानवता व दीपक है श्रोता

साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि विश्व मानवता दिवस पर हम केवल मानवता की बातें न करें बल्कि उसे अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में उतारने का संकल्प लें, क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत किसी बड़े आंदोलन से नहीं होती बल्कि हमारे छोटे छोटे अच्छे अच्छे व्यवहार से।

0: होती है। कहा भी गया है कि न धर्म की दीवार रहे न जाति का भेद रहे, हर दिल में प्रेम हो, हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इंसानियत से बड़ा कोई परिचय नहीं और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी पहचान हो और यही हमारा सबसे बड़ा धर्म हो। इंसान बने, इंसानियत निभाए और इंसानियत को आगे बढ़ाए।
1: बिल्कुल, इन्हीं बातों के साथ अब विदा लेते हैं। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम घूमर हमरवारी अमरी हित्य बुनने आपनी पूर्ण अंजलि नु राम राम बोने आप हम रेडियो हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो ना प्रदेशमलो 8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में जिम के बोने अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम घूमर ने लेने एक ना विषय ने हाते तो बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है के अपने जीवन में योग नु हूं महत्व है हरते अपने योग बल्ले टाइम काढ़ ये स्वस्थ जीवन शैली अपने हरते अपनावी सुवे तो आना विषय माते घना कानी वाते अमारी अब तक की थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा अपनी वाते तो बोनो आप हमर तरेजू अपनो रेडियो अपनी वाते वाकर रेडियो 90.8 FM माते

0: મોની ગીતના ઈશુ પૂરું નાણા ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીવાર સ્વાગત કરું હું અમારે આજે કાર્યક્રમ ઘુમર મેં જેમ કે અમે આપણે ગીત કે પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હું કે આપણી બોન બલ્લે યોગનું શું મહત્વ હે ને હરતે આપણી બોનને સ્વસ્થ દિનચર્યાને અપનાવવું હોકા તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી વિશે વિશેષજ્ઞ જોડાઈ રહી તો સપ્તકી પહેલે જાણી લેણાની વાત ને મોરે કરા આપણી વાતે મેમ નમસ્કાર
1: નમસ્કાર
0: મેમ આપકા મેં બહુ બહુ સ્વાગત કરતી હું વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: ભી આપકા બહુ આભાર વ્યક્ત કરતી હું કે મુજે આપને યહાં બેઠને કા ઓર અપની બાતચીત રખને કા એક મોકા દિયા હે
0: બિલકુલ તો જૈસા કે મેમ આપ હમારે કાર્યક્રમ સે જુડ રહી હૈ તો સબસે પહેલે મેં કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે આપકા પરિચય જાનના ચાહુંગી
1: મેં ડોક્ટર સુનીતા હું મેને કોર્સ કિયા હૈ નેચરોપેથી કા સાથ મેં હેલ્થ કોચિંગ કરતી હું મહિલાઓં કો ક્યા ખાના હૈ કબ ખાના હૈ કિતના ખાના હૈ કિતના સોના ચાહિયે કિસ તરહ સે યોગા કરના ચાહિયે એક્સરસાઇઝ કરની ચાહિયે
0: બિલકુલ
1: ઉનકા જો ભાવનાત્મક લગાવ હૈ યા ભાવનાત્મક સ્થિતિ ઉનકે સ્વાસ્થ્ય કો કિતના અસર ડાલતી હૈ
0: બિલકુલ
1: ઓર ઉનકે આસપાસ કા વાતાવરણ ક્યા ઉન પર અસર ડાલતા હૈ ઉન સબ પર મેં કામ કરતી હું
0: બિલકુલ તો જૈસા કે મેમ આપને મહિલાઓં કે બારે મેં બતાયા તો યહીં આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે મહિલાઓં કે લિયે યોગ કા ક્યા મહત્વ હૈ તો સબસે પહેલે આપ હમે યહી બતાઈએ કે મહિલાઓં કે લિયે યોગ ક્યું જરૂરી હૈ ઓર સાથ હી નિયમિત યોગ કરને સે મહિલાઓં કો કોન કોન સે પ્રમુખ સ્વાસ્થ્ય લાભ મિલતે હૈ
1: મેં સબસે પહેલે તો યે બતાના ચાહુંગી કે મહિલાઓં કે યોગ પર અપન બાત કરે યોગ સે પહેલે યે જાનના જરૂરી હૈ કે પાંચ તત્વ સે મિલકર હમ બને હૈ
0: બિલકુલ
1: આ વો પાંચ તત્વ કે બારે મેં અક્સર યે કહા જાતા હૈ કે પાંચ તત્વ મેં સે કુછ ભી મિસિંગ હો જાય એક ભી તત્વ કમ હો જાય તો હમારે શરીર મેં કુછ ના કુછ ગડબડ હો જાતી હૈ
0: જી જી
1: અભી તક હમ સિર્ફ ઇતના હી સમજ રહે થે લેકિન આજ હમ ઉસકો થોડા દૂસરે તરીકે સે સમજતે હૈ આયુર્વેદા કહેતા હૈ કે અગર પૃથ્વી તત્વ કમ હો જાય તો હમારી બોન્સ મેં હમારી માંસપેશીઓ મેં ઇનમે કહી ના કહી કોઈ ના કોઈ પ્રોબ્લેમ હો સકતી હૈ બાલ મેં હો સકતી હૈ નાખૂન મેં હો સકતી હૈ ઇસકા હમારે ઇમોશન કે સાથ યે સંબંધ હૈ કે અગર પૃથ્વી તત્વ કમ હૈ તો ડર કી ભાવના જ્યાદા અંદર તક બેઠી હુઈ દિખતી હૈ
0: જી જી
1: જોઇન્ટ પેઇન હો સકતે યે ઇસકી ડિઝીઝ હૈ ફટીગ હો સકતા હૈ કઈ બાર મહિલાએં આપને સુના હોગા મહિલાએં કહેતી હૈ અરે આજ તો મુજે બહોત બેચેની સી હો રહી હૈ ઘબરાહટ હો રહી હૈ થોડા બેહોશી જૈસા ફીલિંગ આ રહા હૈ તો યે હો સકતા હૈ અબ બીમારી હમને પહેચાન લી કે યે હોગા એસા હો સકતા હૈ હીલિંગ કિસસે હોગી
0: જી હા
1: તો જો રૂટ વાલી સબ્જીયાં હૈ આપકા શકરકંદ હૈ મૂલી હૈ ગાજર હૈ યે જો રૂટ વાલી સબ્જીયાં હૈ ઇનકો ખાને સે ઓર દૂસરા હૈ જમીન કે સંપર્ક મેં રહેને સે
0: બિલકુલ
1: અગર હમ જમીન કે ધરતી માં કે સંપર્ક મેં રહેતે હૈ હર રોજ 15 से 20 मिनट યા આધા ઘંટા જમીન પર નંગે પાંવ ચલતે હૈ ખાસ તોર સે મિટ્ટી મેં ચલતે હૈ ઘાસ મેં ચલતે હૈ તો આપ દેખો કે ડ્રેસ્ટિક ચેન્જ આતા હૈ હમારા જો સ્થૂલ હૈ હમારા જો સંરચનાત્મક ઢાંચા હૈ યા હમે જો પ્રોબ્લેમ હો રહી હૈ વો ઓલ ઓફ સડન કમ હો જાતી હૈ ખતમ હો જાતી હૈ
0: બિલકુલ
1: દૂસરી વાત કરુંગી મેં પાણી પર બ્લડ ફ્લો પાણી કી વજહ સે હી હોતા હૈ હમ જો બોલ રહે હૈ કુછ પાણી હમારી સાંસ કે સાથ ભાપ કે રૂપ મેં બહાર નિકલ જાતા હૈ દિખતા તો નહીં હૈ લેકિન હોતા હી હૈ
0: બિલકુલ
1: અબ इसकी कमी होगी जो इसका इमोशनल पार्ट है वो है कि हमें गहराई से दुख महसूस होता है अगर हम कभी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आज ये बहुत गहरे अवसाद में है बहुत ज्यादा गहरे दुख में है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इनके शरीर में अभी पानी की कुछ कमी हो गई है
0: बिल्कुल
1: और डिजीज होगी ब्लोटिंग होगी पेट में गैस बनेगी है ना ये समस्याएं होती हैं अब किससे ठीक हो सकती हैं तो इनको करना है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है
0: बिल्कुल
1: पानी की भरपूर मात्रा ये पिए दिन में और कई बार कहा जाता है कि भाई मैं कितना पानी पीऊं 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर कितना तो एक छोटा सा पहचान है कि हमें करना है अगर हम जितनी बार पेशाब जा रहे हैं और पेशाब का रंग बदल रहा है सफेद से पीला हो गया तो मान के चलना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी हो रही है और हमें इनटेक बढ़ा देना चाहिए ऐसे ही अग्नि आग के बिना सब कुछ अधूरा सा है
0: बिल्कुल
1: अग्नि है तो सब है अग्नि है तो जल है अग्नि है तो स्थूल भी है
0: बिल्कुल
1: आपको पता ही है कि जब अग्नि पृथ्वी ठंडी हो गई तो ये हमारी पृथ्वी बन गई नहीं तो आग का गोला थी
0: जी हाँ
1: कुछ भी नहीं था
0: बिल्कुल
1: और दूसरी तरफ देखें तो सूरज अगर है वो अग्नि का आधार है अगर वो है तो सब कुछ है ये धरती है धरती पर पूरी वनस्पति है आप हैं मैं हूँ लगभग सारी चीजें अग्नि से जुड़ी
0: हुई है बिल्कुल
1: इस तत्व के कमी होने से लीवर बीमार हो सकता है अब लीवर में बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे कहेंगे कि लीवर अफेक्ट होगा। इसका मेन इमोशनल है चीजें हैं कि एनर्जी बहुत होती है, जिनमें अग्नि तत्व बहुत ज्यादा होता है वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, जो बहुत ज्यादा अग्नि शरीर में होगी, या ये कहें कि वो व्यक्ति कुछ गर्म खाना खा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: जो अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं तो एसिडिटी होगी। एसिडिटी अगर सेटल डाउन नहीं होती है तो एक्ने भी होता है, वो हमारी स्किन पे, हमारे चेहरे पे भी दिखने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: यानी पृथ्वी तत्व पर अग्नि तत्व का असर दिखाई देने लगता है। इलाज या हीलिंग, कूलिंग रखना, अपने आप को कूल रखना चाहिए। कूल रखने के लिए क्या करेंगे, डाइट अच्छी हो, पानी की मात्रा अच्छे से पिए, तो अग्नि तत्व ऑटोमेटिकली कम हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: हवा, वायु, ये हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। एंग्जाइटी बढ़ती है अगर इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए। इसकी कमी से जो डिजीज रहती है वो गैस बनती है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, यानी नींद ना आना या इंसोमेनिया की हो सकती है। अब हीलिंग मैंने क्या करके हम इसमें स्वस्थ रह सकते हैं,
0: जी हाँ,
1: या अपनी वायु को बैलेंस रख सकते हैं। बेसिकली वो स्लो ब्रीथ है, जिसे हम कहते हैं प्राणायाम कहेंगे, अनुलोम विलोम कहेंगे, भस्त्रिका, और वो करेंगे लेकिन तब जब हमारी ब्रीदिंग्स नॉर्मल से थोड़ा अच्छी हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: अब स्पेस की बात करते हैं, आकाश। कहा तो जाता है कि आकाश का मतलब सब कुछ खाली।
0: बिल्कुल।
1: तो ये प्रूव हो गया कि जो हमारा दिमाग है वो खाली है।
0: बिल्कुल।
1: तो आकाश हमारे दिमाग में बैठा है, फिर हमारे यूट्रस में है, हमारे लंग्स में है, जहाँ हम आकाश को देखते हैं। अब इमोशनली अगर देखें, इसकी कमी होने से हमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, कंफ्यूजन बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: डिजीज डिप्रेशन हो सकता है, अवसाद हो सकता है, और इसका एक ही उपचार है, एक ही हीलिंग है कि जिस व्यक्ति में आकाश की कमी है उसे मेडिटेशन करना चाहिए, और हर रोज करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: बहुत ज्यादा ना करें, लेकिन 5 मिनट से मेडिटेशन शुरू करें और लाइफ उससे बढ़िया हो जाती है, हम अपने डिजीज को कम कर पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब आती हूँ मैं आपके उस सवाल पर,
0: जी हाँ,
1: जो आपने मुझसे पूछा था कि महिलाओं को योग क्यों जरूरी है और उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: मैं कहती हूँ कि योग करने से शरीर में लचीलापन रहता है, मांसपेशियां पुष्ट होती हैं और आंतरिक संतुष्टि बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: केवल ऐसा नहीं है शरीर की संतुष्टि बढ़ी है, शरीर ही सिर्फ लचीला हो रहा है, बल्कि आंतरिक अंग भी पुष्ट होते हैं साथ में।
0: बिल्कुल।
1: अब वो हमारे बहुत सारे अंग हैं, हम बहुत सारी चीजों की एक्सरसाइज करते हैं, लाइक घुटनों में पेन है तो काफ वाले योग करते हैं,
0: जी हाँ,
1: जंघा में दर्द है तो हम हैमस्ट्रिंग वाले योग करते हैं, ऐसे अलग अलग स्थानों पे शरीर के अलग अलग जगहों पे दर्द है, समस्या आ रही है, तो उसके लिए अलग अलग योग बनाए गए हैं,
0: जी हाँ।
1: अब हर महिला ये करती है कि सुबह उठती है, राउंड द क्लॉक चलती है, सिर्फ काम ही काम होता है, किसी भी महिला से पूछे तो कहती है अरे मुझे कहाँ योग की और एक्टिविटी की जरूरत है, एक्सरसाइज की जरूरत है, मैं तो दिन भर ही एक्सरसाइज करती हूँ।
0: जी जी।
1: पर ऐसा होता नहीं है। एक्सरसाइज और योगा का मतलब है कि अपने लिए कुछ ऐसा समय निकालना जिसमें आप वही काम करें।
0: बिल्कुल।
1: ना कि दूसरी एक्टिविटी।
0: बिल्कुल मैम।
1: फिर कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर नियमित रूप से की जाए तो ही असर दिखता है, चाहे वो योगा हो, वर्कआउट हो या एक्सरसाइज हो।
0: जी हाँ,
1: ये कहती हूँ मैं।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें बताया, ऐसे 5 तत्व जिनके बारे में, जो अगर हमारे शरीर में कम हो तो क्या असर हमें देखने को मिलता है और क्या उपाय हम कर सकते हैं। साथ ही हम आपके माध्यम से ये जान पाए कि महिलाओं के लिए योग क्यों जरूरी है और किस तरीके से योग करने से और नियमित योग करने से हमारे स्वास्थ्य पर हमें फायदे देखने को मिलते हैं। बातें मैम कार्यक्रम में हमारी आपसे अच्छी चल रही हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है कि बीच में हम मनोरंजन के माध्यम से श्रोता साथियों को एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं, तो हम आज कार्यक्रम में आपकी पसंद का एक गीत सुनवाना चाहेंगे ताकि हमारी जो ये बातें हैं वो और भी रोचक हो जाए।
1: बालिका वधू का एक गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर संभव हो तो आप वो गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, फिर आगे हमारी कार्यक्रम में बातें जारी रहेंगी।

0: जैसा कि मैम आपकी पसंद का बहुत ही प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना और हमारी गीत के बाद की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाएं, तो जैसा कि आपने बताया था कि महिलाओं का ये रहता है कि मैं पूरे दिन ही काम करती हूँ, मुझे योग करने की क्या जरूरत है, तो आज की जो व्यस्त दिनचर्या है उसमें योग के लिए महिलाएं समय कैसे निकालें, क्या कोई आसान तरीका है?
1: हाँ बिल्कुल आसान तरीका है, महिलाएं बैठ के काम करती हैं, अभी आप देखो किचन में काम करती हैं, खड़ी होके काम करती हैं, आजकल तो वो मॉडर्न किचन का बड़ा जमाना है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें वो कर सकती है कि उनका जो स्लैब है उसका इस्तेमाल कर सकती है, वो वॉल पुशअप्स की जगह पे स्लैब पुशअप्स कर सकती है।
0: जी जी,
1: सब्जी अगर काटनी है तो थोड़ा उकड़ू बैठ के अपनी सब्जियां काट सकती है ताकि उनकी जो पेल्विक कैविटी है वो पुष्ट हो जाए। पुशअप्स कर रही हैं तो उनकी कमर, उनके पैर, उनके काफ वो बढ़िया रहेंगे।
0: जी जी,
1: कंधे अच्छे होंगे तो काम भी हो जाएगा और पुशअप्स भी हो गए। ऐसा तो नहीं है कि जब दाल बन रही है तो वो कंटिन्यू खड़े होकर दाल हिलाएगी,
0: बिल्कुल,
1: तो कर सकती है। 30 मिनट हर महिला को टहलना ही चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: किसी भी तरह वो समय निकाले अपने लिए। और जब वो काम कर रही है, चल रही है, किसी से फोन पे बात कर रही है तो चलते हुए फोन पे बात कर ले।
0: जी जी,
1: किसी को बाहर आवाज लगानी है तो अपने टेरिस पे या अपने घर में घूमते फिरते वो बात कर सकती है या बुलाने के लिए बार बार जा सकती है। किसी ने घर में कोई आया, कोई मेहमान आया, घंटी बजाई तो वो जाके वहाँ बाहर जाके देखे, बाकायदा दरवाजा खोले, अदरवाइज ये होता है कि हम खिड़की से झांक के कह देते हैं हाँ हाँ आ जाइए,
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज है जिनको करके वो अपने आप को स्वस्थ रख सकती है।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं, कुछ आसान से तरीके हैं जिसके माध्यम से अपने लिए समय निकाल सकती हैं। यही मैम, हर उम्र में अलग अलग कुछ योग करने की जरूरत होती है, जैसे कि किशोरावस्था में कोई युवती है, कोई गर्भवती महिला है, प्रसव के बाद और वरिष्ठ जो महिलाएं हैं उनके लिए, तो योग के तरीके क्या अलग होने चाहिए?
1: योग के तरीके बहुत अलग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये कहूंगी कि गर्भवती महिलाओं के लिए योग के तरीके थोड़े अलग हैं।
0: जी जी,
1: उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा घूमे। उनके लिए जो घूमने वाली एक्सरसाइज है वो कंसिस्टेंसी बनी रहे, नियमितता बनी रहे, वो उनके लिए बहुत अच्छी है।
0: बिल्कुल,
1: या वो छोटी छोटी योग कर सकती हैं कि जमीन पर बैठ जाएं, दोनों आलती बना लें, अगर नहीं आलती पालती बना के वो बैठ पा रही हैं या चौकड़ी बना के नहीं बैठ पा रही हैं तो घुटनों को थोड़ा खुला रखें।
0: जी जी,
1: और दोनों हाथों को बैंड करते हुए लेफ्ट साइड और थोड़ा राइट साइड वो देखें, पूरा मूवमेंट उसमें कमर वाला आता है। बहुत ज्यादा भारी एक्सरसाइजेस गर्भवती महिला को नहीं करनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अब आप कह रही हैं किशोरी और युवतियों के लिए, तो ये तो बढ़ती उम्र की लड़कियां हैं, इनके लिए सारी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, पर आसान एक्सरसाइज से या आसान योगा से शुरू करें और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली महीने दो महीने जब आसान एक्सरसाइज या आसान योग से आगे बढ़ जाए तो वो थोड़ा एडवांस योगा कर सकती
0: हैं।
1: बुजुर्ग महिलाएं उतना ही करें जितना उनका शरीर उनको अलाउ करता है।
0: बिल्कुल,
1: एक्सरसाइज योगा लगभग सबके लिए बराबर है, लेकिन प्राणायाम बुजुर्ग महिलाओं को करना बहुत अच्छा रहता है, गर्भवती महिलाओं को करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल बराबर रहना चाहिए।
0: जी,
1: तो अगर वो प्राणायाम करती हैं, अनुलोम विलोम करती हैं, और शॉर्ट फॉर्म में अगर वैसे कहूँ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उनको रेगुलरली करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने हमें बताया कि किस तरीके से उम्र के अनुसार अलग अलग योगा के कोई तरीके नहीं है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए कुछ आसान से योग है जो वो कर सकती हैं। यही मैम बात आती है कि तनाव, चिंता, नींद की कमी और हार्मोन असंतुलन जैसी जो समस्याएं हैं वो योग में किस प्रकार मदद करती है, क्योंकि अभी के समय में हम देख रहे हैं कि कुछ छोटी बच्चियां हैं उनके भी हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए हैं, अनियमित समय पर महावारी आ रही है, कभी हम देखते हैं कि महीने में 2 बार महावारी आ जाती है, तो ऐसे में योग किस प्रकार से मदद कर सकता है?
1: जहां तक हार्मोनल चेंजेस की बात है, बहुत कुछ हमारी भावनाओं पे निर्भर करता है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत कुछ हमारे माहौल पे निर्भर करता है कि हम किस तरह के माहौल में रह रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, तो नींद का जो ना आना ये हमारे टेंशन, हमारे इमोशंस और हम जो एंजाइटी हमको हुई रहती है या बहुत सारी पढ़ाई की चिंता होती है, करियर की चिंता होती है नव युवतियों को,
0: बिल्कुल,
1: तो ये सारे जो चीजें हैं ये इंसोमेनिया की तरफ बढ़ाते हैं। नींद ना लाने के लिए जिम्मेदार है।
0: जी हाँ,
1: एक नींद ना आने का कारण केवल तनाव और इमोशंस या टेंशन नहीं है, उसका कारण हमारा डिजिटल लगाव भी है।
0: बिल्कुल,
1: है ना, हम भले ही माँ से बात ना करें, पिताजी से बात ना करें, लेकिन हमें मोबाइल चाहिए, हम मोबाइल से बातें करेंगे। हम खाना खाएंगे तो माइंडफुलनेस के साथ हम खाना नहीं खाते, फोन देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। कई बार तो ये भी नहीं पता चलता
0: कि हम कितना
1: खा क्या रहे हैं और कितना खा गए।
0: बिल्कुल,
1: है ना, जिसकी वजह से ओबेसिटी भी हो रही है।
0: जी जी,
1: फैट भी बढ़ रहा है, फैट मसल्स बढ़ रहे हैं बॉडी में, जबकि मसल्स बढ़ने चाहिए, वो नहीं बढ़ रहे, है ना।
0: बिल्कुल,
1: अब नींद क्यों नहीं आ रही है? जब हम बहुत ज्यादा डिजिटल चीजों के आसपास रहते हैं या उनका उपयोग करते हैं तो हमारे हार्मोन्स में फर्क आता ही आता है।
0: जी जी,
1: तो सबसे अच्छी चीज है कि इसके लिए योगा करें और मेडिटेशन करें।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन खाना खाते समय, सोने से एक घंटा पहले और जागने के एक घंटा बाद तक हमें डिजिटल चीजों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो टीवी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, व्हाटएवर जो भी आप यूज करते हैं, उनसे एक घंटे की दूरी बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: अगर जिंदगी में हमने इनको अपना लिया तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हमारे नहीं होंगे, बहुत अच्छे वे में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे।
0: जी जी,
1: तनाव नहीं होगा, नींद बढ़िया आएगी।
0: बिल्कुल,
1: ये करना जरूरी है। अब इसमें मैं एक चीज कहती हूँ, अच्छी नींद आने के लिए अफर्मेशन बहुत जरूरी है। अफर्मेशन का मतलब होता है कि मैंने जो अपने लिए गोल बनाए हैं,
0: उद्देश्य,
1: उनको सोचना कि मैं आज ऐसी हो गई हूँ, मींस अच्छी नींद के लिए योगा के साथ साथ जरूरी है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेंड किया जाए। ट्रेंड किस वे में किया जाए? आप जब सोएं, सोने से 10 मिनट पहले जब आपका चेतन सोएगा और अवचेतन मन जागेगा तो एक उनीदापन जैसा होता है कि बस अब नींद आने ही वाली है।
0: बिल्कुल,
1: उस बीच में आपको अफर्मेशन देना है, वो कल्पना करनी है जो आप चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जब उसके करते करते आप नींद के आगोश में जाते हैं तो नींद बहुत गहरी आती है और अच्छी आती है।
0: जी हाँ,
1: ये तनाव और चिंताएं, हार्मोनल इम्बैलेंस तभी बढ़ता है जब नींद अच्छी नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: और नींद अच्छी तब नहीं होती है जब हम अपने आप में नहीं होते, हाँ, उद्देश्य से दूर हो, अपने आप से दूर हो।
0: बिल्कुल मैम।
1: जी
0: जी मैम, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि जो महिलाएं पहली बार योग शुरू करना चाहती हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शुरुआत कैसे करनी चाहिए?
1: ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं इसमें ये कहूंगी कि जो महिलाएं योग शुरू करना चाह रही हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि 10-15 मिनट से वो योगा को समय दें।
0: बिल्कुल,
1: यानी जब शुरुआत कर रही हैं तो 10 मिनट तक, 15 मिनट तक वो मैक्सिमम अपने आप को योग के लिए दें। ज्यादा करेंगी, हमेशा ऐसा होता है कि बहुत देर तक कर लिया योगा, पहले दिन तो हम बहुत बढ़िया कर लेते हैं एक्सरसाइज और योगा, दूसरे दिन फिर जब शरीर दुखता है तो हम हाय तोबा मचाते हैं, फिर योगा करते नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए 10-15 मिनट से शुरू करें, लेकिन नियमित करें। 8 बजे शुरू किया है तो ये कोशिश करें कि 8 बजे से लेके 8:15 बजे तक योगा करना है तो करना ही है। कंसिस्टेंसी जब रहेगी तो योगा का फायदा होगा।
0: बिल्कुल,
1: और कंसिस्टेंसी नहीं है, नियमितता नहीं है, तो योग का फायदा नहीं होने वाला है।
0: बिल्कुल, तो मैम आपने सही कहा, यही अब बात आती है और ढेर सारी बातें आपके माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को जानने मिली है। यही अंत में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरीके से उन्हें योग को अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए?
1: यूं तो जिंदगी में औरतों को या महिलाओं को हाशिए में भेज दिया है, परिवर्तन आ रहा है कि अब बहुत सारी महिलाएं अपने लिए निर्णय ले रही हैं और आगे भी लेंगी।
0: जी जी,
1: और इसी चीज को ध्यान में रख के मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी तरफ से सब जो बहनें हैं उनको कहूंगी कि उन्हें अपने लिए ज्यादा नहीं तो 15 मिनट निकालने ही निकालने चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: वो जो 15 मिनट उनके लिए, वो उनकी क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी जी,
1: क्वालिटी रहेगी तो अपनी फैमिली को भी क्वालिटी टाइम दे पाएंगी, बच्चों को क्वालिटी टाइम दे पाएंगी। मैं स्वस्थ तो जगत स्वस्थ।
0: बिल्कुल,
1: मैं स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ। इस भावना के साथ मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ।
0: बिल्कुल, तो मैम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आज महिलाओं के साथ बात करने का सीधा मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका और आपके रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।
0: मुनजिम की अवड़े अपड़े वैस में विषय विशेषज्ञ सुड़ता कहता ने एना ने माध्यम तकी अपड़ा घनी आकी वातन ने जान्यो। आशा करा हूँ कि आ हंगरी वाते आपने गमी होंगा, किम के अवे टाइम थे गयो है अपड़ा अनस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वानो। તો સૂટો તો પડો, પણ સાથે પહેલે આપને અમારે કાર્યક્રમનું પતું બતાડી દો, તાકી આજનો આ કાર્યક્રમ આપને કેવું લાગ્યું એની બારામે આ પ્રાય સૂચવા અમને આલી શકો અમારે અણાપતા માટે. અમારું પતું હે કાર્યક્રમ ઘુમર વાગડ રેડિયો 90.8 FM, મુકામ પોસ્ટ કોપડા, વાગધરા કેમ્પસ, બાંસવાડા, રાજસ્થાન. અમારું પિનકોડ નંબર હે 327001. હજી વધારે જાણકારી બદલે આપ અમને ફોન કરી શકો અમારા અણા ફોન નંબર માટે. અમારો ફોન નંબર હે 9414082643. તો બોનો ફેરી મલંગા અણસ કાર્યક્રમ મેં અણસ ટેમ માટે એક નવા વિષય ને હાથે તારું દી. રામ રામ, રામ રામ.

साथियों, कुछ लोग बहस जीत जाते हैं लेकिन रिश्ते हार जाते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचा लेते हैं इसलिए जीवन भर लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। जी हाँ, हर बार सही होना जरूरी नहीं, कई बार साथ होना ज्यादा जरूरी होता है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पाराश्रय। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जहाँ हम हमारे जीवन की उन बातों पर चर्चा करते हैं जो हमारे मन और हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों को गहराई से प्रभावित करती है। आज का विषय है हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ। आज हम बात करेंगे कि रिश्तों में जीतना जरूरी है या रिश्ते बचाना। श्रोता साथियों, यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि कई रिश्ते केवल इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात मनवाना चाहते थे लेकिन एक दूसरे को समझाना नहीं चाहते थे। घर हो, परिवार हो, दोस्ती हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का संबंध हो या समाज में लोगों के बीच जुड़ाव, हर जगह यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर महत्वपूर्ण क्या है, अपनी जीत या रिश्तों की मजबूती। तो बातें इस विषय पर कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि रिश्तों में जीतना जरूरी है या रिश्ते बचाना। श्रोता साथियों, अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि रिश्ते समान विचारों से नहीं बल्कि आपसी सम्मान से चलते हैं। दो लोग कभी भी हर बात पर एक जैसी सोच नहीं रखते। उनकी पसंद अलग होती है, उनके अनुभव अलग होते हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं और यह जीवन की सच्चाई है। जी हाँ, समस्या तब शुरू होती है दोस्तों जब हम अपनी सोच को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं। कहते हैं ना कि रिश्ते तर्क से नहीं विश्वास से चलते हैं और विश्वास तब बनता है जब हम सुनना सीखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर बहस जीतना चाहता है वो कई बार जीवन के सबसे सुंदर रिश्ते हार जाता है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि रिश्तों को जीतना हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम रिश्तों को छोड़कर खुद जीतना क्यों चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों, कई बार हमारी इच्छा सच जानने की नहीं होती बल्कि सही साबित होने की होती है। हमें लगता है कि यदि हमने अपनी बात नहीं मनवाई तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन सोचिए कि क्या हर बहस में जीतने के बाद भी मन खुश रहता है? क्या सामने वाले की चुप्पी हमेशा सहमति होती है? कई बार लोग बहस बंद कर देते हैं लेकिन दिल से दूर हो जाते हैं और यही दूरी धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में सबसे ज्यादा जरूरी किसी चीज की होती है तो वह है रिश्तों की। परिवार में और भी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि रिश्तों की समझ होना, धैर्य की समझ होना, संवाद की समझ होना, क्योंकि परिवार कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां हर दिन कोई विजेता चुना जाए। परिवार वह जगह है दोस्तों जहां लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यदि घर में हर व्यक्ति केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा तो वहां अपनापन कम होगा, तनाव अधिक हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं ना कि पति पत्नी का रिश्ता भी जीत और जिद का है। कई बार पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, विषय बड़ा नहीं होता लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? अहंकार होता है। दोनों सोचते हैं कि पहले सामने वाला चुके, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब कोई एक व्यक्ति यह सहने का साहस रखता है। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, यह हार नहीं होती है, यह रिश्ते के प्रति सम्मान होता है। क्योंकि माफी मांगना हमेशा गलती की निशानी नहीं होता, कई बार यह रिश्तों को महत्व देने की निशानी होता है। इसी के साथ बात आती है, दोस्ती में जीत नहीं भरोसा जरूरी है, क्योंकि सच्ची दोस्ती में यह मायने नहीं रखता कि कौन सही है बल्कि ये मायने रखता है कि कठिन समय में कौन साथ खड़ा था। यदि हर छोटी बात पर हिसाब रखा जाए तो दोस्ती बोझ बन जाती है, लेकिन यदि रिश्तों में विश्वास और उदारता हो तो वह समय की हर परीक्षा पार कर लेती है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि रिश्तों में जीतना जरूरी नहीं है, रिश्ते बचाना जरूरी है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको ढेर सारी बातों से अवगत करवाया था कि किस तरीके से परिवार में सबसे ज्यादा जरूरत समझ की, धैर्य की और संवाद की होती है, और इसी तरीके से ये सारी चीजें पति पत्नी के रिश्ते में, दोस्ती के रिश्ते में और समाज में भी लागू होती है। अब यही बात करें कि समाज में आजकल दूरियां क्यों बढ़ रही है, तो आज का समाज जो है श्रोता साथियों, उसमें लोग पहले से अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस बढ़ रही है, लोग बिना पूरी बात समझे निर्णय सुना देते हैं, असहमति को दुश्मनी समझ लिया जाता है। ऐसे समय में रिश्ते बचाने की कला पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हमें ये सीखना होगा कि अलग विचार रखने वाला व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि हर असहमति रिश्ते का अंत नहीं होती, कई बार वही रिश्तों को गहरा समझने का अवसर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सम्मान बचा रहता है वहाँ रिश्ता भी बचा रहता है। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि बच्चों को बचपन से ही हमें ढेर सारी चीजें सिखानी है। बच्चों को हमें ये नहीं सिखाना चाहिए कि हर हाल में जीतना है, उन्हें ये सिखाना चाहिए कि कैसे सुनना है, कैसे समझना है, कैसे अपनी बात को सम्मान से रखना है, कैसे मतभेद होने पर भी संबंध बनाए रखने हैं। यही जीवन की असली शिक्षा है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर रिश्ते किसी एक बड़ी घटना से नहीं टूटते, वे टूटते हैं अनसुनी बातों से, अनकहे दुखों से, बार बार हुए अपमान से, और उस भावना से कि सामने वाला हमें समझना ही नहीं चाहता। इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए बड़े प्रयास नहीं, बल्कि छोटे छोटे संवेदनशील व्यवहार की जरूरत होती है। जी हाँ, रिश्ते बचाने का मतलब यह नहीं है कि हर अन्याय सह लिया जाए। यदि बात सम्मान, सुरक्षा, सच्चाई या आत्मसम्मान की हो तो अपनी बात दृढ़ता से रखना भी आवश्यक है, लेकिन जहाँ केवल अहंकार की लड़ाई हो वहाँ जीत की जगह समझदारी चुनना बेहतर होता है। क्योंकि दोस्तों, खुद से आप जरा पूछिएगा कि 5 साल बाद यह बहस कितनी महत्वपूर्ण होगी। यदि उसका उत्तर बहुत कम है तो शायद उस रिश्ते को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जीवन के अंत में लोग ये याद नहीं रखते कि उन्होंने कितनी बहसें जीती हैं। लोग ये याद रखते हैं कि उनके साथ कौन खड़ा रहा, किसने उनका साथ दिया, किसने उन्हें समझा, किसने कठिन समय में उनका हाथ थामा। रिश्ते की खूबसूरती जीत में नहीं बल्कि अपनत्व में छिपी होती है। इसलिए जब भी जीवन आपको किसी रिश्ते, अपने अहंकार में से एक चुनने की स्थिति में लाए, तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी नरमी, एक शांत शब्द और एक कदम पीछे हट जाना उस रिश्ते को बचा सकता है, जो किसी भी बहस की जीत से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो श्रोता साथियों, रिश्ते पेड़ों की तरह होते हैं, उन्हें बढ़ने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने में कुछ पल ही काफी होते हैं। इसलिए हर बार ये मत सोचिए कि कौन सही है, कभी ये भी सोचिए कि कौन अपना है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत वह नहीं है जो हमें दूसरों पर मिले, बल्कि वह है जो हमें अपने अहंकार पर मिले। और जिस दिन हम यह जीत हासिल कर लेते हैं दोस्तों, यकीन मानिए उस दिन हमारे रिश्ते, हमारा जीवन दोनों अधिक सुंदर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने रिश्ते को बचाइए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, क्योंकि परिवार में जब हम रहते हैं तो मनमुटाव तो होता ही है, लेकिन उस मनमुटाव में हम रिश्ते तोड़ दें ये बहुत गलत बात है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते सम्मान, विश्वास और धैर्य की मिट्टी में पनपते हैं। जहाँ केवल अहंकार होता है वहाँ संबंध धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ एक दूसरे के लिए जगह होती है वहाँ मतभेद भी रिश्तों को नहीं तोड़ते। इसलिए अपने जीवन में ऐसा वातावरण का निर्माण कीजिए जहाँ लोग आपकी बातों से नहीं, आपके व्यवहार से अपनापन महसूस करें। जी हाँ, जब जीवन की शाम आएगी तब हमें याद नहीं रहेगा कि हम कितनी बहसों में जीते थे, लेकिन यह जरूर याद रहेगा कि किन लोगों ने हमारे जीवन को अर्थ दिया था। इसलिए रिश्तों को जीत और हार की कसौटी पर मत तोलिए, उन्हें समझ, संवेदना और विश्वास की डोर से जोड़िए, क्योंकि कई बार एक रिश्ता बचा लेना 100 बहसें जीत लेने से कहीं बड़ी उपलब्धि होती है। और जो इंसान लोगों के दिलों को संभालना सीख जाता है वह जीवन की सबसे अनमोल कला सीख जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी।
अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444